0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: 6:08 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago.
2: Ahmed, hatu wahan se.
3: Hadise achanak hi hua karte hain. Ghabraye nahi. समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: 11.99%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
6: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
4: 11.99%।
8: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
9: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
0: 100 FM। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। जहां ख्वाब, वहां HBL।
9: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
11: क्या कहा, ईवी बाइक जीतने का मौका? जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
12: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
13: वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम।
14: पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें।
15: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
16: This program is brought to you by
17: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी एचपीएल ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
18: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
19: एंड
20: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
19: एंड
21: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
22: एंड एचबीएल फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
23: एंड HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार।
24: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizan Bank, the premier Islamic bank.
25: And
26: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
27: FM 100.
28: 31 saal. FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum, Pakistan.
29: Assalamu alaikum, Pakistan.

0: बच्चो बड़ी भूख लगी है।
1: अच्छा, पड़ोस से मिठाई आई थी, अब्दुल वहाब ने बताया नहीं।
0: मिठाई? जलेबी, जलेबी।
1: अरे अरे, पता नहीं, एक ही डब्बा था, बंद था। अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब, मिठाई कहाँ है? कंट्रोल अब्दुल वहाब, कंट्रोल।
0: जलेबी, जलेबी।
1: लड्डू, चम चम, रसगुल्ला,
0: जलेबी, जलेबी,
1: बर्फी, रबड़ी, सोहन हलवा,
0: जलेबी, जलेबी के तरह जलेबी,
1: चक्का, जलेबी नहीं है।
0: जलेबी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, परेशान मत हो, ऐसा करते हैं कि हम सबको कह देते हैं कि हमारे घर मिठाई भेजनी हो तो सिर्फ जलेबी।

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है. और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत जवाबित लागू है.
0: This program is brought to you by
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: एंड
5: सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा.
0: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: एंड
7: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
0: एंड
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: एंड HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार.
0: एंड
8: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizan Bank, the premier Islamic bank.
0: And
9: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
10: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
11: FM 247365.

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा और आज हम बात कर रहे हैं कि आपका दिल जो है ना वो किसके आने से बहलता है और आप लोगों के मैसेज हमारे पास आए हैं और तो वो हम जरूर शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का जो इम्पोर्टेंट इशू है वो आबिद अमीर की बर्थडे पूरा उन्होंने अपना जो है ना अपना 29 सितंबर 85 को बता दिया सबको एज ही बता दिया है और तस्वीर मैंने ऐसे बर्थडे में एक्साइटेड जो है ना मैं अपने आप को ही समझती थी आबिद अमीर लेकिन आपका भी लेवल है कि अपनी तस्वीर लगा के अपनी पैदाइश की वो डेट भी डाल दी है और माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो आपको बहुत बहुत आपकी सालगिरह मतलब इतना आपने मुझे बताया कि मुझे तक याद है आपकी बर्थडे और मैंने आपको पहले से विश कर दिया था आपको जलेबी वाला गाना भी लगा दिया था सबसे पहले आपके तो बाद भी नहीं बोलेगा मैंने कोई गाना नहीं लगाया। सो हैप्पी बर्थडे टू आर वेरी वेरी फेमस लिसनर आबिद अमीर जो सिर्फ मेरे शो में नहीं हर शो के अंदर पाए जाते हैं और एक कॉमेंट नहीं करते बहुत सारे कॉमेंट्स करते हैं लेकिन रौनक भी इन्हीं की वजह से इन्हीं की बातों की वजह से और माशाल्लाह ये खुद भी आरजे मुझे लगता है आधे आरजे हैं और कहीं कहीं शोज भी कर चुके हैं लेकिन आबिद अमीर आपके मैसेजेस आपके कॉमेंट से हमारे शो में रौनक एनर्जी रहती है और जब इनकी कोई बात मुझे समझ नहीं आती तो मैं इनको बता भी देती हूँ लेकिन आज आपका दिन है मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और कितने अच्छे दिन मतलब आपकी बर्थडे पे दिल का दिन मनाया जाता है यकीन करें अगर मेरी सालगिरह वाले दिन ऐसा कोई इंटरनेशनल दिन मनाया जाता मैं तो बहुत शो मारती मतलब ऐसी शो मारती उसमें कोई मस बात नहीं है लेकिन आपको मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आज सारे गाने आपके नाम सारे के सारे जितने गाने चल रहे हैं वो सब आपके। अब्दुल रऊफ कह रहे हैं कि जब आपकी पोस्ट आती है थैंक यू कि जब दिल बहलता है जब आपकी पोस्ट आती है चले ठीक हो गया। इकबाल हुसैन साहब का हैप्पी मॉर्निंग का मैसेज आया इकबाल हुसैन साहब थैंक यू सो मच आपने मेरी वो बड़ी प्यारी पिक्चर बनाई थी एआई से मैं खुद सोच रही थी कि मैं इतनी प्यारी हूँ अच्छा और लोग कुछ लोग वाकई में समझ रहे हैं कि मेरी असली पिक्चर है मैं आपको बता दूं कि थोड़ी बहुत ज्यादा असली ही है थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की है उसने एआई ने लेकिन थैंक यू सो मच बहुत प्यारी पिक्चर आपने बनाई। फयाद मेमन कह रहे हैं इंसान की जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता चीजें बदल जाती हैं जज्बात बदल जाते हैं पसंद बदल जाती है लोग बदल जाते हैं सुबह सुबह इतना गहराई वाला मैसेज। नजीर खोसा साहब प्लीज टॉपिक पे कुछ कहिए ओके और आज का हमारा टॉपिक यह है कि आपका दिल किसके आने से जो है वो बहलता है किसके कहते हैं ना उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अली अब्बास कह रहे हैं कि आपके आ जाने से जो है ना मेरे दिल बहलता पूरा वो एक्चुअली वो गाना ही है। सो आज वर्ल्ड हार्ट डे भी है आज आप दिल की बातें हमसे करें हमें बताएं कि किसके आने से आपको लगता है कि लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है। और राइट हमें मैसेज कर सकते हैं आप आरजे समीहा के फेसबुक पेज पे या एट आरजे समीहा इंस्टाग्राम पे इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का। हकीम शकीर साहब आप कैसे हैं नसरीन जी आप कैसे हैं नसरीन जी के लिए वैसे ये गाना है जब नसरीन जी आती है ना मुझसे मिलने तो मेरा तो यही होता है कि आपके आ जाने से खैर मैं गाना कम गाती हूँ अभी हम आतिफ असलम की आवाज में आपके लिए लगाते हैं गाना इंजॉय

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabis Single Remedies, Germany.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो भैया, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.9%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से ज़वाबित लागू है।
7: 11.99% 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: 100 FM।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: 100 FM।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: 100 FM।
9: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदे HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
0: एंड
10: सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
0: एंड
11: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
0: एंड
12: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
8: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: एंड HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार।
0: एंड
13: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizan Bank, the premier Islamic bank.
0: And
14: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
15: Pakistan humse hai. Hum acche to Pakistan acha. To aao ehd karein ki jaisa Pakistan hum dekhna chahte hain, waise khud bankar dikhayenge. Kyunki hum badlenge to badlega Pakistan. Azm-e-istehkam, mustahkam Pakistan.
0: Mufad-e-amma ke liye paigham حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
16: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
17: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
16: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا۔
17: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔ ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
16: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں, صرف فاکس سے یہ کم ہوگی.
18: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
17: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
18: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
16: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
17: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
16: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
19: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा। आज हम ये बात कर रहे हैं कि किसके आने से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और दिल बाग बाग, दिल गार्डन गार्डन, दिल गार्डन हो जाता है। मतलब दिल पे इतने गाने हैं ना कि मतलब कि सोच है आपकी। खैर, अब लोगों की पैगामात हम शामिल करेंगे दोस्तों, क्या आप लोग क्या कहते हैं और किसके आने से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, दिल लगता है आपका। और हमारे पास अदनान अहमद का मैसेज आया है और कौन कौन है लोग, नसीन बजे जी कैसी हैं आप, हकीम शकीर साहब का भी मैसेज आ गया है, या हमीद कह रहे हैं क्लोज फ्रेंड्स हु टच योर हार्ट, ये अच्छी बात है। दोस्तों का कोई बंदा नाम भी ले, ये कैसी पर्दादारी है, ऐसी भी क्या पर्दादारी है, बता दे नाम लेना चाहिए क्या यार। जलाल, जलाल नहीं, नहीं जलाल नहीं, बिलाल, तुम्हारे आने से मेरा दिल लगता है ठीक है। और आबिद अमी कह, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सैम, रास्ते में पक्के दोस्त को जलेबी सुना और आज आपने मुझे बच्चा पार्टी में रखा शो, थैंक यू सो मच। और दिल पर नाजिया सन का सॉन्ग, अच्छा ठीक है जी। दिल पर, दिल मेरा ये कहता है तुम मेरे हो, नाजिया हसन की क्या बात है। हकीम शकील कहे, हकीम शकील अहमद अस्सलाम वालेकुम माय मैडम आजय समिया जी। और आबिद अमीर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, आप सलामत खुश रहे मैडम आजय समिया जी, दिल बहल जाता है मॉर्निंग शो में आ जाने से, मैं मैडम आपकी मिसाल और कोई सानी नहीं, आपकी जलवा अफरोजी ओहो हमारी जिंदगी की मिसाल है ये, और हक और सच है मैडम आजय समिया जी, थैंक यू। और मिसाल पाकिस्तान, मैं हूँ मिसाल पाकिस्तान। सोचा कि शकील जी, आपने मुझे आपके मैसेज में जब पढ़ती हूँ ना, लगता है कि मैं पत्नी कहाँ हूँ, मेरा कोई तख्त ताउस और मैं वहां पर जा के बैठी हुई हूँ और नीचे आम आवाम को देख रही हूँ, यू पीपल, खास तौर पर कराची के आवाम को, यू दुखी पीपल। खैर आगे मैं कुछ नहीं बोली। खैर, और राजपूत चौहान क्या कह रहे हैं जी, आपके एंजिल के आने से दिल लगता है मेरा, कौन एंजिल है भाई ये तो बता दे, एंजिल किसका नाम है, राजपूत चौहान बता ही दे। और उसके बाद इकबाल अदनान अहमद क्या कह रहे हैं, अदनान अहमद का मैसेज हम पढ़ते हैं, अदनान अहमद करू पर वह मैसेज, दिल बहलता है मेरा बल्कि आपके तमाम लिसनर्स का, आपके फैंस का, आपके आ जाने से, वाह वाह वाह क्या बात है। ये इसलिए मैंने टॉपिक नहीं रखा था कि आप लोग मेरी तारीफ करें, लेकिन करें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आपकी आवाज सुनकर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शो सुनकर, इसमें पार्टिसिपेट करके, और ये कोई लफाजी नहीं, कोई झूठ नहीं, हकीकत है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप हक गोई सच बोलना, आप जो मौजूद लेकर आते हैं वो मजबूर करता है हमें कि आपको सुने। अब आपकी ऐसी आदत हो गई कि रहा नहीं जाता, पहले हफ्ते में 5 दिन थे और अब 4 दिन शो होता है, इसमें से भी कभी आप गायब हो जाती हैं तो बहुत याद करते हैं आपको, अल्लाह पाक आपको मजीद इज्जतों से, कामयाबियों से नवाजे, आमीन। थैंक यू सो मच अदनान अहमद। और मुझे लगता है कि एक आरजे की यही कमाई है कि ये आप लिखवा नहीं सकते किसी से कि नहीं आप मेरी तारीफ लिखो। मुझे लगता है कि पैसे देके भी किसी से आप इतनी तारीफें नहीं लिखवा सकते, क्योंकि पता चल जाता है कि वो दिल से है। और आप लोगों के ये मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ और बस मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि आई एम वेरी लकी कि मुझे इतने प्यारे लिसनर्स, मोहब्बत करने वाले लिसनर्स भी फैंस सभी के होते हैं, लेकिन इतने अच्छे क्वालिटी वाले फैंस जो है ना वो कम कम लोगों के होते हैं, पढ़े लिखे महजब कमाल उर्दू वाले, कमाल अंग्रेजी वाले, आली अंसारी हैं, वसीम अहमद सिद्दीकी हैं, हकीम शकील साहब इतनी मोहब्बत करने वाले, नसीम पटेल जी की तो क्या ही बात है, और आबिद अमीर द बर्थडे बॉय, आज तो आबिद अमीर की हैप्पी बर्थडे है, तो क्या सीन है, कितने केक्स, वैसे हर एक से ही इंसान केक मांग रहे होते हैं। आप आज आप बता दें कि हमारा केक क्यों नहीं आया यहाँ पे, आप मुझे बता दें, बड़ा सा केक आना चाहिए था, दिल शेप, यार आपका तो हर वर्ल्ड हार्ट डे पे बर्थडे, आपको तो हार्ट शेप में होना चाहिए था, मेरे नाम का केक कहा यार, आबिद अमीर केक आप उधारे वो भी दिल शेप, मुझे दिल शेप केक चाहिए। और अभी हम हार्ट वाले गाने लगा रहे हैं, तो जब भी मैं ये हार्ट वाला, जब भी मैं हार्ट पे शो करती हूँ तो मुझे पता है कि ये वाला गाना तो बनता है, क्योंकि इस टाइम पे हम इंग्लिश सॉन्ग लगा रहे होते हैं, और दिस टाइम स्पेशली आई ट्राई कि मैं इंग्लिश क्लासिक जो ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो लगाऊं, और आई होप कि ये गाना वही हो जो मैं चाह रही हूँ। एक सेकंड में चेक करती हूँ, तो लेट्स एंजॉय, जैसे ही पटेल जी गाना आपके लिए, मुझे पता है आपको गाना पसंद है, आइए सुनते हैं।

0: It's 9 a.m. The Time Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL. This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: Hadise achanak hi hua karte hain. Ghabraye nahi. समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाए ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: 100 FM।
9: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
8: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
11: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
12: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाए। तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
13: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम।
3: पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें।
8: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
9: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू है।
12: This program is brought to you by
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
14: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
15: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
14: एंड
16: टपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
17: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: एंड HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार।
12: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizan Bank, the premier Islamic bank.
8: And try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
18: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
19: FM247365.
20: Good morning, Dr. Duomio Vettinelli, with my milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
21: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

morning exercises, cycling and healthy heart, and to avoid junk and oily food in daily life. अच्छा जी, और तो ये बहुत अच्छी मुझे लगती है ऐसी सारी एक्टिविटीज. अब मैंने काफी वॉक की है. एक तो मैंने खुद ही ऑर्गेनाइज करवाई थी वॉक अगेंस्ट स्मोकिंग आगा खान के अंदर. तो लेकिन ये वॉक मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उस पर माने बड़ी अच्छा माहौल होता था, सारे बड़े अच्छे लोग होते थे. लेकिन साइकिलिंग, एक्सरसाइजिंग, फिजिकल एक्टिविटी, इट इज सो इम्पॉर्टेंट. और मुझे बहुत अच्छा लगता है आमिर जफर साहब कि आप अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं. मुझे लगता है कि फ्यूल प्राइसेस की वजह से अब लोगों को ज्यादातर वो साइकिलिंग की तरफ ही आ जाना चाहिए, साइकिलिंग एंड गधा गाड़ी की तरफ. तो वो जो मजाक प्रोटेस्ट करे तो मैं कहती हूँ असली में गधा गाड़ियां आप ले लें. और गधा लॉयल भी होता है, पता है, जानवरों के साथ रहने से ना बंदे की ना टेंशन कम होती है लिटरली. और हम, मैं आपको बताऊं, दिल बहलता है मेरे आपके आ जाने से. इसका ये भी होता है कि जब आप जिनके पेट्स होते हैं तो वो जब आप घर जाता है मालिक, तो जिनके डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, वो फॉरन आते हैं. खासतौर पर डॉग्स जो है ऐसे भाग कर आते हैं, इतने खुश होते हैं. अंग्रेजों ने कहा कि बच्चे तो हमें देख के खुश नहीं हो रहे, तो डॉग्स ही रख लो. तो वो डॉग्स का बहुत ख्याल करते हैं, क्योंकि डॉग्स इतनी एक्साइटमेंट शो करते हैं आपके आने से. और ऐसे बैकग्राउंड में गाना चल रहा हो कोई, तो इसलिए जो है ना वो, और फिर उनके होने से ना पेट्स के आपके ना टेंशन रिलीज होती है, ये भी है. तो आप गधा रखें, घोड़ा रखें, ये बेहतर है क्योंकि वो एक जीती जागती चीज है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है. ये जो गाड़ियां है ना, मशीन, किसी से भी आप उसे गाड़ी से कितना भी प्यार कर लें, गाड़ी ना आपसे पीछे पलट के प्यार नहीं करना. उसने कहा पेट्रोल डालो, फिर गाड़ी जो है ना ऐसा एसेट है जो वक्त के साथ साथ जो है ना जिसकी वैल्यू गिर रही होती है. ना प्यार मिलता है ना मोहब्बत मिलती है. लोगों ने फजूल के स्टेटस के लिए इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई है, इतना हाई फ्यूल कंजम्पशन रखा है. मैं कह रही हूँ गाड़ियां कोई फायदा ही नहीं है गाड़ियों का. खैर, कहते हैं जब पेट्रोल महंगा होता है तो गाड़ियां सस्ती होती हैं. मैं कह रही हूँ आपसे कि जो है ना आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, साइकिल ले लें. किंग करे साइकिल ले लें, साइकिल वाली गाड़ियां, जैसे वो रिक्शा होता है ना साइकिल रिक्शा, वहां पे वो होना चाहिए. उसे पता है, और खवातीन को बोलें कि साइकिल रिक्शा चलाएं, एक्सरसाइज के एक्सरसाइज, पैसे के पैसे, लिटरली. जो खवातीन बैठ बैठ के, क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे, बता दूं अल्लाह की पनाह, लिटरली खवातीन का, स्पेशली जो आंटीज मम्मीज हैं, आंटी तो नहीं बोल सकते किसी को, जो मम्मीज हैं और जो कभी नहीं मानेंगी कि वो जिंदगी में कभी ओवर 40 होंगी, कभी नहीं हो सकती. एक औरत कभी 40 क्रॉस ही नहीं करती, क्या बात कर रहे हैं. वो 40 उस वक्त क्रॉस करेगी जब वो 60 की हो गई होगी. 20 इयर्स का मार्जिन रखती हैं खवातीन. तो अब वो नहीं हिलती अपनी जगह से, वो भले एलीट क्लास की हो या वो वैसी हो. बहुत कम है खवातीन जो वॉक करती हैं या वो जिम जाती हैं. और फिर इतनी बीमारियां हो गई हैं उनको, उनको सिर्फ कपड़े और मेकअप करने का शौक होता है कि जी कपड़े और मेकअप करके हम कमेटी पार्टीज में चली जाएं, लेकिन सेहतें उनकी खराब है. प्लीज मैं आप लोगों से यही बोलूंगी, दिल का बहुत ख्याल करें, वॉक जरूर है, लाजमी है. अगर आप पर्देदार हैं तो बुर्का पहन के, नीचे जॉगर्स पहन के भी वॉक कर सकती है. ऐसे मैंने लोगों को देखा है, पर्देदार हैं, अपने पकड़े अपने नालायक बच्चों को और बोलेंगे बेटा तुम जा रहे हो, मुझे भी साथ में वॉक कराओ. वॉक करना शुरू कर दी, यकीन करें अगर ज्यादा से ज्यादा खवातीन वॉक करेंगी गलियों में, वो भी डंडा लेके, तो ये जो वो है ना, क्या कहते हैं वो बॉय स्नैचर्स, उन दो तीन के तो पकड़ ही लेंगी, पिटाई कर देंगी. मैं आपको बताऊं, खवातीन से नहीं कोई इतना जी सकता. तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में लगता है खवातीन को निकलना चाहिए और वॉक करनी चाहिए, सेहत का ख्याल रखें. जितने भी यंग लोग हैं उनसे यही बोलूंगी, अकेले अपनी बॉडी बनाने का क्या फायदा कि अम्मा अब्बा की सेहतें ठीक नहीं है, उनको भी लेके जाएं वॉक पर, उनको भी जिम लेके जाएं, उनको भी वॉक कराएं. उनको ज्यादा जरूरत है, उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, वो ज्यादा मोबाइल रहते हैं, फ्लेक्सीबल रहते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना और अपने घर वालों के दिल का ख्याल रखें. और फिलहाल ये गाना सुने जिसका नाम है दिल धड़के. मैं तुम आज मैं बड़े गाने के मूड में हूँ, सारे गाने मैं गा लूँ. खैर, एंजॉय करिए ट्रैक, हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे या @RJ Samia इंस्टाग्राम पे.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwaber Single Remedies Germany.
1: HBO Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBO.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयान मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
3: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमों के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बआसानी खरीदे HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत ज़वाबित लागू है.
0: This program is brought to you by
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: And
5: सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा.
0: And
6: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: And
7: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रा पर जाएं.
1: And HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: And HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार.
0: And
8: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक Nizam Bank, the premier Islamic bank.
0: And
9: try all new Vatika shampoo. Nourishes hair naturally.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
10: FM 247365.

0: Good Morning Pakistan on FM 100. This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: Hadise achanak hi hua karte hain. Ghabraye nahi. समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%
0: 100 FM।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
0: 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111827 25 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
11: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमों के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदे HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
10: क्या कहा, ईवी बाइक जीतने का मौका? जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमों के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदे HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू हैं।
12: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
13: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाए। तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
7: वाजिदा वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: This program is brought to you by
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी एचपी प्लांट चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
9: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
14: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
9: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाए, उमरह पर जाए।
8: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: एंड HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार।
13: एंड पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
7: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: facebook.com/fm247365
15: fm247365

0: जी आप सुन रहे थे गाना तेरे बिना दिल ना लगे, और मैं हमेशा इस गाने पे बहुत पुरजोश खुश होती हूँ और डांस भी करती हूँ. राइट, इसी सांस बुरी है. सो आप लोग बताएं कि आपका दिल जो है वो किसको देखकर बहलता है, खुश होता है, और आपके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है. हमें मैसेज करें आरजे समिया के फेसबुक पेज पे, आरजे समिया इंस्टाग्राम पे. और आज कुछ वजूहात की वजह से मैं 10 बजे तक शो करने वाली हूँ. तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद आरजे समिया.
1: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe's Single Remedies Germany.
2: Azra behan, zara baat to suno. Hato piche. भागो अहमद, हटो वहाँ से.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
4: 11.9%
5: ओ भाई क्या है ये 11.9%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.9% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए.
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है.
7: 11.9% 100 FM. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
8: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
9: 100 FM.
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
9: 100 FM.
10: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत तो जवाबित लागू है.
9: 100 FM.
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
9: 100 FM.
10: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत जवाबित लागू है.
1: This program is brought to you by.
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
11: एंड सरसब्ज नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा.
12: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
4: and
9: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye,
4: and
7: HBL Freedom Account, Jahan Khwab, Wahan HBL,
10: and HBL Islamic, Safar-e Hajj mein aapka khidmat guzar,
4: and
12: Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank,
4: and
13: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
14: خواتین و حضرات, منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, جبکہ دراصل اس عمل کا تانا بانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا, والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا, خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا, غیر معمولی اخراجات میں اضافہ, یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم, ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
15: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
16: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/fm247365.
17: 24/7/365.

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आज वर्ल्ड हेल्थ डे की मुनासबत से आज हमने रखा है कि दिल आपका किससे बहलता है। और तो आप लोगों के मैसेजेस भी मेरे पास आए काफी सारे, आप लोगों ने बताया। और इसके साथ साथ आबिद अमीर आपकी बर्थडे भी आई थी, पूरा शो में आपकी जितनी बर्थडे हुई है एक मेरी बर्थडे पे शोर होता है और एक आपकी बर्थडे पे शोर हो रहा है, राइट। तो पाकिस्तानी वुमेन फेस हाईएस्ट हार्ट डिजीज मोर्टेलिटी इन साउथ एशिया और इसके हिसाब से जो है खवातीन को बहुत जरूरत है। और आप जो लोग मैरिड हैं प्लीज अपनी वाइफ्स को लेके जाएं कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी जो है वो उसकी वजह से खवातीन में कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ये है सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आपकी वाइफ बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी कि मासियों को छुट्टी दे दें। जब तक मासी आपके घर में आती रहेगी आपकी बीवी ने कुछ करना नहीं है फिजिकली, मोटी हो रही है यकीन करें। मैं आपको एक सिंपल सी आपको एक बात बताऊं कि कुछ लोग जमीन पे खवातीन बैठ ही नहीं सकती, दे कांट सिट ऑन द फ्लोर, वो अगर बैठ गई तो उठ नहीं सकती बगैर किसी मदद के। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। गांव की औरतें ज्यादा फिट है, गांव की औरतें मतलब 60 साल की उम्र, मैंने एक लिया था किसी से, लकड़ी मांगी थी मैंने एक औरत से जो काफी एजेड लग रही थी, मैंने कहा मैं उसकी हेल्प करी, मैंने कहा नहीं मैं उठा देती हूँ आपकी लकड़ियां, वो मैं नहीं उठा पाई, वो इतनी भारी लकड़ियां और वो बिल्कुल फिट होती है, दे आर फिट। गांव के लोग ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे जिम, अब हर कोई तो जिम नहीं जा सकता क्योंकि जिम जाने के अलग मसले हैं कि जिम का टायर हो, फिर मेकअप हो, फिर बंदा जिम जाए, वो कहेंगे इससे बेहतर है घर में ही रह जाओ, एक घंटे के लिए जाना उसके लिए 2 घंटे पहले तैयार होने में लग रहे हैं। आप घर के काम करें, आप घर में बैठ के झाड़ू दें और बैठ के पोछा दें, यकीन करें खवातीन ठीक हो जाएंगी। और वो बैठी रहती हैं और हमारी अम्मियां जब बहू आ जाती है तो तख्त से ना उठेगी सास, ना ना ना, भले उससे पहले सारे घर के काम करती हो लेकिन जैसे ही बहू आ जाएगी सास ने तख पकड़ लेना है, उसके बाद बीमार होना है और फिर बाप बेटे की शिकायत करनी है कि बेटा तुम दवाइयां लाना भूल गए। ओ भाई खुदा के लिए खुद दवाइयां तो ला सकते, शॉपिंग करने की चली जाएंगी लेकिन अपनी दवाइयां ना बेटे से मंगवाएंगी। इस किस्म की जब तक मेंटालिटी रहेगी तो ये दिल की तो बहुत अच्छा, मुझे लगता था कि बेचारे मर्द अकॉर्डिंग टू उमर शरीफ के मर्द ज्यादा मरते हैं पाकिस्तान में जल्दी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। खवातीन की भी जो है ना बहुत हालतें खराब है, मेरी अपनी फैमिली के अंदर भी खवातीन जिनको मैं बहुत फिट समझती थी पता चला कि जी उनको एंजाइना अटैक्स हो रहे हैं और दिल कमजोर है उनका। वैसे भी अपने शौहर और उनकी अपने बेटों की सुस्ती और काहली देखकर, अच्छा शौहर और बेटे भी ऐसे हैं वो भी कोई घर का काम नहीं करेंगे, सारी टेंशन है अम्मा पे डालेंगे, तो ये बड़ा सीन हो गया है। तो प्लीज अपनी घर की खवातीन को वॉक पे धक्के मार मार के निकालें, उनसे बोलो कि बेटा बुरका पहन के चली जाओ, पर्दे का मसले हैं। बुरका से फायदा ये भी है कि मेकअप भी नहीं करना पड़ता, ये भी बड़े फायदे हैं इसके अंदर। लेकिन घर से प्लीज निकलो, वॉक करो, फिजिकली एक्टिव रहो, क्योंकि आप देखिए मैं नहीं कह रही हूं, ये साइंटिफिक एक फैक्ट है कि पाकिस्तान की खवातीन सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे हैं हार्ट डिजीज के, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है, उनको बैठ जाना है। और आजकल जो है ना वो बस बिठा के ना टीवी के ड्रामे दिखा दो, उन पर कॉमेडी दिखा दो, लिटरली। तो ये बहुत जरूरी है कि आप मासियों को छुट्टी दे दें, मासियां फिट हो रही हैं। एनीवेज तो मुझे आज दीजिए इजाजत कि अच्छा ये आप भी तभी हम लोग मुझे एडवाइस क्यों करते रहते हैं, ये बातें करो ये बातें ना करो, आप आज कुछ ना करें, बर्थडे बॉय एंजॉय करें आप, ठीक है। और इसके अलावा बस मैं आप लोगों से लूंगी इजाजत, इतना मजा है प्रोग्राम, पूरे साल की चार्जिंग होगी, खासतौर पर दुआएं बड़ा रिलेट करती हैं दोस्तों को। और मुनासिब से होटल पे आपको दावत है जी, किस होटल में दावत है लोकेशन और एड्रेस हमारे साथ शेयर कर दें ताकि हम बताएं, अवामी दावत है, सब आबिद अमीर की हैप्पी बर्थडे पार्टी के अंदर जाएं। और आपको बहुत बहुत सागर मुबारक हो, आपको अदनान अहमद ने भी विश किया, नसीम पटेल जी, हकीम शकील ने तो आपके लिए गाने भी बोल दिए। हकीम शकील साहब आपका ना ये गाना इतना अच्छा, आपने गाना मुझे बताया ना कि प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर, ये मैं ढूंढूंगी गाना, बहुत अच्छा है। अभी तो टाइम नहीं है लेकिन इंशाल्लाह किसी दिन पाकिस्तानी क्लासिक टाइम पे अताउल्लाह खान अजीम सिंगर की आवाज में हम ये गाना आपके लिए लगाएंगे। और आप तमाम लोगों को अपने दिल का बहुत ख्याल रखें, जो आपके दिल के करीब हैं उनका भी ख्याल करें, उनकी सेहत का भी ख्याल करें। आपसे ही बोल रही हूं मैं, है अकेले अकेले अपनी सेहत का ख्याल कर रहे होते हैं, इंजीर को भिगो भिगो के खा रहे हैं, तो दूसरों को भी खिलाएं। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, और सबसे बड़ी समझदारी यही है शुक्रगुजारी, अल्लाह का शुक्र करें अपने दिल को, आप अल्लाह ताला के शुक्र से भर देंगे तो आपके दिल को जो है इसी में सुकून मिलेगा। और अल्लाह ताला के जिक्र के अलावा किसी चीज में
سکون نہیں ہے. اگر سکون تلاش کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. عابد امیر کو ہماری طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک, اور مجھے پتا ہے یہ واحد میرا شو نہیں ہے جس میں ان کی سالگرہ منائی جائے گی. ہر جو بھی آرجیز ہیں ان کے شو میں یہ جائیں گے اور اپنی برتھ ڈے منائیں گے. لیکن اللہ کرے آپ ایسے ہی زندہ دل رہیں, ایسے ہی ہنستے گاتے رہیں, اور کبھی بھی لائف میں سیریس نہ ہو, اور ہمیں بھی کیک کھلا دیں. آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک, اور یہ گانا بھی ہم عابد امیر کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. انجوائے, ہیو اے گریٹ ڈے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.

0: Sound Check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL. This program was brought to you by
1: Purani Gari Chodo, Nayi Gari Ka Khwab Pura Karne Chalo, Karibi HBL Branch Chalo Ya Apply Karo Online.
2: And Sir Sabs Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Ta Ja.
3: And Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
0: And Tabal Family Mixture Line Umrah Par Jaye.
4: And HBL Freedom Account, Jahan Khwab Wahan HBL.
5: And HBL Islamic Safar Haj Mein Aapka Khidmat Guzar.
6: And Pakistan Ka Best Bank Nizam Bank, the Premier Islamic Bank.
7: And try all new Vatika Shampoo, nourishes hair naturally.
0: This transmission is brought to you by
8: Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
9: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
10: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
11: 11.99%
12: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
13: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
11: 11.99%।
14: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबल सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबल सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
15: 100 FM।
5: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमियों के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदे HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार, शराइत ज़वाबित लागू है।
16: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
5: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमियों के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदे HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार, शराइत ज़वाबित लागू है।
15: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
15: This program is brought to you by
17: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
18: FM 247 365
19: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے تو یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
20: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
21: FM 100
20: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
21: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking, aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath, HBL Freedom Account.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
3: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमों के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदे HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
4: Via Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: FM 100 facebook.com/FM247365 FM 247365

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo in Schwabe, Germany. Proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपने करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से बाबत लागू है।
3: 11.99%।
6: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
9: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमों के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत तो जवाबित लागू है।
10: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। एक आसान और सेफ मन अमल का तरीका है, ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
11: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 0211118 2725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
9: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमों के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू है।
6: वाजिदा वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
13: This program is brought to you by
11: VR Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो बेटा, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: वीकली लकी ड्रॉ विनर सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: This program is brought to you by
4: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestones, and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwaber Single Remedies Germany.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुवर के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: This program is brought to you by
2: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवजत नहीं कर रहे हैं. होशियार रहें, मुहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. मनी हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवजत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवजत भी दहशतगर्दी है. حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: This transmission is brought to you by
1: Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
4: ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। एक आसान और सेफ मन अमल का तरीका है। ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
5: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
6: वीकली लकी ड्रॉ विनर सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनामात जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनामात। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: This program is brought to you by
5: VR Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: location for maximum music.
1: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabes Single Remedies, Germany.
3: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं। घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
1: This program is brought to you by
5: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
6: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन साफिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौम शनाख्ती कार्ड फाल होनी चाहिए। याद रखिए, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन साफिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनके फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुताबिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवाकर सिम की मिल्कियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बर वक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फिन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ये आपके शनाख्ती तहफ्फुज और सार्फिन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम। प्रीति

0: FM 100's time check. It's 12 noon. This program was brought to you by
1: Via Telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
0: This transmission is brought to you by
2: Dr. Hamid Jamal Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: Zara behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hain aap sabke bhai? Kaisa guzar raha hai aap sabka din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? To ji, as usually hongi aapse khoob sari baatein share karenge, kuch information, aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. बहुत सारा म्यूजिक भी होगा आज प्रोग्राम में, एक क्विज भी होगा, तो बहुत सारी चीजें आज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का हिस्सा बनने वाली हैं. लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जी प्रोग्राम का ना बाकायदगी से हम आगाज कर लें, क्योंकि प्रोग्राम का बाकायदगी से जो आगाज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों से होता नहीं है, बल्कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. तो लेट्स बिगिन.

0: यस एवरीबॉडी, तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। और अब जबकि बाकायदगी से आगाज हो चुका है तो सबसे पहले आपको बताएंगे तरीका कार कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। तो उसके लिए आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ आप जो है वो फातिमा खान के यानी कि RJ फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी हमने कर दिया है स्टेटस अपडेट। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप हमसे कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, 3636 के जरिए या फिर RJ फातिमा खान के फेसबुक पेज के जरिए। तो इट्स एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन यू एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। तो आपने देर नहीं करनी है, जल्दी से अपनी हाजिरी लगानी है और हमें बताना है किस वक्त आप हमें कहां से सुन रहे हैं। तो भाई हमारे पास मैसेज आया है, कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं लवली RJ आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है भाई। तो आज हमें लुक वर्ल्ड ने जो है वो 3636 पर ज्वाइन कर लिया है। सो हेलो, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ। और इसी के साथ साथ ब्रेक की जानब जा रही हूँ, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे।
1: It's 12:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwaber Single Remedies Germany.
2: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابل سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابل سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے अब दुश्मन की गोलियां

0: बारूद नहीं मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

Yes everybody, so I am back again. और आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हमारा जारी है, तो आप लोग जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हमें 3636 पर मैसेज कर या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैसेज कर। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कहां पर कनेक्ट होना चाहते हैं, तो जल्दी से आप लोग अपनी हाजिरी लगाएं और इसी के साथ साथ हमें बताएं कि इस वक्त आप लोग हमें सुन कहां से रहे हैं। ओके जी, सो आज है 29th of September, तो आज अगर मेरे लिसनर्स में से किसी की बर्थडे है तो आपको मुबारक हो, लेकिन इसी के साथ साथ आज चंद दिन मनाए जा रहे हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो आज नेशनल कॉफी डे मनाया जाता है। ओके, सो कॉफी के पसंदीदा लोगों के लिए आज का दिन है। कॉफी इज वेरी नाइस और कॉफी भी आपको बहुत अच्छी लगती है पीकर, बड़ा रिफ्रेशिंग समटाइम्स लगती है, लेकिन चाय के शौकीन लोगों के लिए ना कुछ मसला ये है कि उन्हें हर हाल में ना चाय ही चाय होती है, यानी कि उनको मुतमईन करने के लिए ना चाय का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसी बात नहीं कि कॉफी मजे की नहीं है, लेकिन चाय वालों की ना दोस्ती कॉफी से कम कम ही होती है, और बिल्कुल वैसी होता है जैसे कि कॉफी वालों की चाय से दोस्ती कम कम होती है। तो ये दोनों बड़े ही मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं, एक जानब कोई चाय को चाहता है और दूसरी जानब कोई कॉफी को चाहता है, तो इन लोगों के ताल्लुकात बड़ी मुश्किल से आपस में बहाल हो सकते हैं। है ना, वैसे ये बात तो है ना, आप लोग अग्री करते हैं कि कुछ ये सूरत हाल होती है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट का भी आज दिन मनाया जाता है, और मैं समझती हूँ कि ये भी एक बड़ा खास दिन है लोगों को आगाही फराहम करने के लिए, समझाने के लिए कि खाने का जया या नुकसान कितना गलत है, और इस चीज का अंदाजा हमें तब तक कभी नहीं होगा जब तक हम और इर्द गिर्द लोगों को ना देखें कि अब भूख एक कैसी कैफियत है, लोग भूख के लिए कुछ भी करने को गुजर जाते हैं, और यहां पर हम अपनी पसंद से खाना खाया, पसंद आया तो खा लिया, नहीं तो जाया कर दिया, और ये बहुत ही अनप्रोफेशनल वे है, ये बहुत ही गलत बात है। खाने को कभी जाया नहीं करते, खाने को चार नहीं 10 दफा ले लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर लो, एक दफा ही इतना ज्यादा ना लो कि आपसे खाया ना जाए। और अक्सर औकात हमारी पसंद की कोई चीज बनी होती है, हमें कहीं पसंद की कोई चीज नजर आ रही होती है, वो बहुत एक वेरी नाइस प्रेजेंटेशन के साथ नजर आ रही होती है, और आप सोचते हैं कि शायद यही मौका है इसे खा लेने का, कहीं ये मौका निकल ना जाए, तो ज्यादा से ज्यादा इसको अपनी प्लेट में डाल लो, और फिर वो कुछ देर बाद आपसे खाया नहीं जाता और वो खाना जाया हो जाता है। तो खाने को जाया बिल्कुल ना करें, खुदा का शुक्र करें हर एक नवाले पर कि अल्लाह ताला ने आपको खाना दिया है, आप अपनी पसंद का खाना बना लेते हैं, अपनी पसंद का खाना खा लेते हैं, ये भी किसी नेमत से कम नहीं है, तो खुदा रा इसे जाया ना करें। ऑल राइट जी, सुलुकपल कहती हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूं, तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है, प्लीज प्ले रहीम शाह सॉन्ग, ओ माय गॉड गेट वेल सून। भाई क्या हो गया आपको, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल भाई तबीयत खराब है, आप रहीम शाह की आवाज सुने, शायद इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाए, सो एंजॉय, वी विल बी राइट बैक।

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जरा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो भैया, भागो। अहमद, हटो वहाँ से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है। ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
4: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
5: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
6: वीकली लकी ड्रॉ विनर सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
7: facebook.com/fm247365 fm247365

Yes, everybody, so I'm back again. Look, Pearl kehti hain, thank you so much, lovely RJ. You're welcome, lovely listener. And enjoy. Aur koi baat nahi hai, tabiyat to kharab hoti rehti hai, zindagi ka hissa hai, lekin relax, inshallah jald az jald aap theek ho jayengi. Lekin ye hai ki tabiyat kharab hone ke baad aapko wo to hota hai, ajeeb sa lagta raha hai, hota hai, aap bade bechain ho jate hain, lekin koi baat nahi. This is also the part of life ki kabhi aapki tabiyat aisi hai to kabhi aapki tabiyat kaisi hai, koi baat nahi, lekin inshallah aap jald az jald theek ho jayengi. और इसी के साथ साथ क्या बात करें आपसे भाई, बहुत सारी बातें हमारे पास करने के लिए आपके साथ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि जी शुरू कहां से करें, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि उसमें से किसी एक बात को चुनना हो जाता है जरा मुश्किल. तो कोई बात नहीं जी, बातें तो लादाद हैं और आपसे बातें भी करते हैं और आपके हाल अहवाल भी जानते हैं. हमारे पास एक और मैसेज आ चुका है, कहते हैं सलाम आप ही, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताओ आप कैसी हो. मैं भी बिल्कुल ठीक हूं, मजे में हैं, फिट फाट हैं जी और एंजॉय कर रहे हैं आप लोगों के साथ. अच्छा भाई, तो एक मैंने एक बड़ी मजे की चीज पढ़ी और जिसे पढ़ने के बाद मुझे हंसी भी आई और मैंने अग्री भी किया कि ये रियलिटी है. द फनीएस्ट थिंग अबाउट कराची इज दैट यू विल कंप्लेन अबाउट द सिटी फॉर 20 मिनट्स एंड देन डिफाइन इट द सेकेंड समवन फ्रॉम अनदर सिटी सेज समथिंग अबाउट इट. है ना, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम कराची को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारी जो है वो मुश्किलात का शिकार भी हैं, एक जाने रोडों का मसला भी है और थोड़ा सा ये है कि कराची में ग्रीनरी भी खत्म हो गई है. अब मतलब इतना ज्यादा प्लेजेंट कराची नजर नहीं आता, ना साफ सुथरा ना कुछ, तो हम मुखालफत भी कर रहे होते हैं कराची की कि हाँ यार ये चीजें हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, कराची मजीद खूबसूरत नजर आए, यार लाहौर बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मतलब हम इस तरह कर रहे होते हैं. कुछ देर के लिए हम ये बात करेंगे और अगर कोई दूसरा तीसरा किसी और शहर का रहने वाला कराची की बुराई कर दे तो ओ माई गॉड, ये तो लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर किसी ने आवाज उठाई है कि आपसे ये चीज बर्दाश्त ही नहीं होती कि अगर कोई और कहीं का भी रहने वाला आप अपने शहर की तारीफ करे और कराची की बुराई कर दे. तो नहीं भाई, कराची के आवाम का ये है कि उसे कराची से मोहब्बत बे इंतहा है. एंड आई अग्री विद दिस, ये तो हकीकत है कि भाई कराची से सब लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि शहर कराची के खिलाफ कोई एक आवाज भी सुनने को तैयार नहीं होता. लाख हम अपने इख्तलाफात जाहिर करते रहें कि यार कराची में ना ये मसला सही हो जाए, ना यार ये हो जाए या वो हो जाए, जो हम एक जनरली इश्यूज को हाईलाइट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी और का ये कहना ना हमें बर्दाश्त नहीं होता. क्योंकि कराची वाले इज वेरी ऑब्सेस्ड विद शहर कराची और ये हकीकत है, बल्कि एक सर्वे के तहत इस चीज का पता लगाया गया है कि कितनी मोहब्बत है कराची वालों को कराची से कि कोई भी इस तरह की बात करे तो ये कराची वालों से बर्दाश्त नहीं होती. तो ये तो बात है भाई, कराची से है हम सबको बहुत प्यार और अल्लाह हमारे कराची को ऐसे ही शादोआबाद रखे हमेशा, हंसता मुस्कुराता और बस जल्द अज जल्द जो है वो बेहतर रोडों वाला नजर आ जाए हमें कराची. और इसके लिए हम बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते रहेंगे. और इसी के साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक अदर ट्रैक की जानब भी जाया जाए, क्योंकि बातों का मजा तो दोबारा तब होता है जब उसमें साथ ही साथ ना मजे मजे के ट्रैक्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं. तो चलें जी, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक.

ऑल राइट, तो आ गए वापस हम इस ट्रैक के साथ. भाई रशीद खान ने हमसे इस ट्रैक की रिक्वेस्ट की थी. एंड नाउ वी आर बैक अगेन. इसी के साथ साथ आज कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं हमने आपको बताया, लेकिन आज वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाया जाता है, यानी कि दिल का आलमी दिन. और वर्ल्ड हार्ट डे का मकसद लोगों को हार्ट हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देना है. दिल के सेहतमंद रखने के लिए आपने क्या क्या करना है, आपने बैलेंस्ड डाइट और सब्जियां फ्रूट्स को रूटीन का हिस्सा बनाने हैं, रोजाना फिजिकल एक्टिविटी या वॉक करनी है, स्मोकिंग से परहेज करना है, नमक और अनहेल्दी फैट्स का इस्तेमाल कम करना है, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी फोकस करना है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को रेगुलर चेक करवाना है. दिल सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी जरूरी है. इस वर्ल्ड हार्ट डे पर अपना ख्याल रखें, क्योंकि हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ की बुनियाद है. यस एवरीबॉडी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो एक अदर अवेयरनेस डे होता है, ताकि आपको आपकी हार्ट हेल्थ का पता चले कि आपने इसका किस तरह ख्याल रखना है, किस तरह आपने एहतियात करनी है, क्योंकि दिल बहुत काम की चीज है जी. इसकी सेहत याबी के लिए आपने बहुत सारे एफर्ट्स तो नहीं करने, लेकिन आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है ना वो तब्दीली लानी है, ताकि आपका जो हार्ट हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहे, बेहतर रहे, बल्कि बेहतर नहीं आए, मस्त से बेहतरीन रहे. सो इसके लिए यू हैव टू डू सम एफर्ट्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपनी जिंदगी को हेल्दी बनाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने की जानिब जरूर रुझान दें, क्योंकि ये दिल का मामला है जी. और दिल पर बात हो रही है, तो चलो जी एक ट्रैक शामिल करते हैं दिल से रिलेटेड और आते हैं वापस इसके बाद.

0: H 115 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सब जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: This program is brought to you by
2: Step School से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 03111117837।
0: facebook.com/fm247365
3: fm247365 This is the lunchtime special only on fm 100.

Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me Fatima Khan aur aap mujhe sun rahe hain FM 100 Pakistan mein. Aap sabko khush aamadeed kehte hain program lunch time special mein. Ji haan, ek bar phir se hum aa chuke hain apne program mein aur 12 se 2 ke darmiyan hamara aur aapka saath hota hai aur aapne suna hoga hamare program mein hum aapse kuch keh rahe the ki ji haan 1 baje ke baad jab aap hame join karenge to hamare listeners liye kuch surprise hoga, kuch activity hogi aur I'm sure abhi mere paas messages bhi aa rahe hain ki ji wo kya सरप्राइज था वो क्या एक्टिविटी है आप हमें बताएं हम बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं और वक्त गुजर नहीं रहा होता अच्छा जब भी कोई ऐसे सस्पेंस की बात होती है ना तो एक्चुअली में टाइम नहीं गुजर रहा होता क्योंकि बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि पता नहीं क्या बात है या क्या सवाल है तो जी हाँ हम आपके साथ खेलने जा रहे हैं एक अदद क्विज डॉक्टर हमीद जनरल होमी और शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी की जानिब से आप सबके लिए एक सवाल सही जवाब देने वाले 5 खुशनसीब सामाइन को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे और आज का हमारा सवाल क्या है सबसे पहले आप इस पर गौर करें और फिर इसका जवाब आप हमें दीजिएगा शोबे कंपनी के बानी डॉक्टर विल्मा शोबे का ताल्लुक किस शोबे से था ये हमारा आपसे सवाल है जिसके जवाब हमारे पास मौजूद है आप इसमें से चूज कर सकते हैं ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए केमिस्ट ऑप्शन बी फार्मासिस्ट ऑप्शन सी एलोपैथिक डॉक्टर ऑप्शन डी बॉटनिस्ट तो इसका सही जवाब देने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है KHI लिखना है स्पेस देना है अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन ऑप्शन डी भी आप लेकर हमें भेज सकते हैं तो ये आपके साथ खेला जा रहा है क्विज तो कोई भी 5 लिसनर्स जो हैं वो विनर बन सकते हैं तो हम सवाल दोहराते भी रहेंगे आप जब तक सोचें प्रोग्राम के सेकंड हाफ की रिवायत होती है एक अदर ट्रैक सबको डेडिकेट करते हैं हम आपको ट्रैक भी डेडिकेट कर रहे हैं एंजॉय करें और सवाल का जवाब सोचें और हमें 3636 पर मैसेज करें

यस एवरीबॉडी, सो वी आर बैक और पूछ लिया है आपसे सवाल और इंतजार है हमें आपके जवाब बात का। तो जल्दी जल्दी आपने हमें जवाब देना है 3636 पे, यानी कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। सवाल आपसे यह है कि शोबे कंपनी के बानी डॉक्टर वर्मा शोबे का ताल्लुक किस शोबे से था? ऑप्शन ए केमिस्ट, ऑप्शन बी फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी एलोपैथिक डॉक्टर, ऑप्शन डी बॉटनिस्ट। तो सही जवाब क्या है आपकी नजर में, इसका जवाब देने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। तो जल्दी जल्दी आप हमें मैसेज करें और सही जवाब आपकी नजर में क्या है वो आप हमें बताएं, क्योंकि जी हां, जीतने वाले 5 खुशनसीब लोगों को डॉक्टर हमीद जनरल शोबे और विल्मा शोबे की जानिब से आप लोगों को गिफ्ट फराहम किए जाएंगे। सो कौन 5 खुशनसीब होंगे हमारे प्रोग्राम में, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। और इसी के साथ साथ ये लंच का टाइम भी है, तो आपके लंच में क्या मौजूद है हमें जरूर बताएं। बिरयानी, निहारी, कढ़ाई, पुलाव, कबाब, कढ़ी, दाल, चावल या फिर कुछ और, तो आपके लंच में क्या है ये भी हमें साथ साथ बताएं। तो कुछ जवाब भी दें और अपना लंच भी हमसे जरूर शेयर करें कि इस वक्त आपके लंच में क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है। कुछ देर पहले हम आपको ये भी बता रहे थे कि जी हां, वर्ल्ड हार्ट डे है, तो अपने दिल की सेहत का भरपूर ख्याल रखें, अपनी डाइट में सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करें, अपनी रोजमर्रा की डाइट में जो है आपने सब्जियों को जरूर ऐड करना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं, उनको हम कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी करें हम आपके मैसेजेस का इंतजार, जल्दी जल्दी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। हमारे पास जो है वो मैसेज आ चुका है, सबसे पहला मैसेज हमारे पास आया है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो मैं ये भी बताती चलूं अपने तमाम सुनने वालों को कि आप अगर इस क्वेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना जवाब देने के लिए, अपना नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमसे जरूर शेयर करें ताकि हम बासानी आपसे राब्ता कर सकें। अगर आपका जवाब ठीक होगा तो फौरन आपसे राब्ता किया जाएगा, सो मेक श्योर कि आपने अपना प्रॉपर नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखना है ताकि आपसे आसानी से कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो अपना जवाब के साथ साथ अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। अनटिल एंड अनलेस यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू वर्ड्स अनदर ट्रैक एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस।

0: only on FM 100 Pakistan.
1: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwaber Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: जरा बहन जरा बात तो सुनो हटो पीछे भागो अहमद हटो वहां से
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम ले सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
4: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो यह एक आसान और सेफ मन अमल का तरीका है ना बार बार क्लिनिक जाने की झंझट और ना ज्यादा खर्चा बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी
5: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी رابطہ कर सकते हैं
6: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूं वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना
7: वीकली लकी ड्रॉ विनर सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन अब आप भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
1: This program is brought to you by
8: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at
1: 0311-111-7837. FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.
9: توہین رسالت نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس میت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں ذمہ دار شہری بنیں میڈیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے

ऑल राइट जी माय फ्रेंड्स, सो आई एम बैक और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान, और इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ खेला जा रहा है एक अदद क्विज। तो डॉक्टर हमीद जनरल होमी और शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी की जानिब से आप सबके लिए एक सवाल। सही जवाब देने वाले 5 खुशनसीब सामाइन को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। और हमारा सवाल यह है कि शोबे कंपनी के बानी डॉक्टर विल्मा शोबे का ताल्लुक किस शोबे से था? ऑप्शन ए केमिस्ट, ऑप्शन बी फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी एलोपैथिक डॉक्टर, ऑप्शन डी बॉटनिस्ट। और इसका जवाब देने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर हमसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपसे राब्ता करने में आसानी हो। हमारे पास रिजवान का जवाब आया है और वो कहते हैं कि जी जवाब है एलोपैथिक डॉक्टर। ओके, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है, लेकिन रिजवान आपसे कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ना आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हमें बताया नहीं है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। तो अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर हमसे शेयर कीजिएगा ताकि हम आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहें कि जी हमने जवाब दिया था और वो शामिल नहीं हुआ, तो वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आपने अपना नंबर नहीं लिखा होगा। और जरीनूर कहती हैं कि सलाम, कैसी हैं? आज खाने में चिकन जिंजर है और मेथी आलू है, जबरदस्त, वेरी नाइस। जिंजर, ये जो चिकन जिंजर आपने बनाया है ये बहुत मजे का होगा, आई एम श्योर फॉर दैट एंड एंजॉय। और जरीनूर आप भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं हमारे साथ, इसका जवाब दें 3636 पर। अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग चाहें तो ऑप्शन ए बी सी डी लिखकर भी हमें भेज सकते हैं, या फिर अगर आप जानते हैं कि सही जवाब क्या है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस। तो जी हाँ, आज इस प्रोग्राम से 5 खुशनसीब लिसनर्स को चुना जाएगा। उसी के साथ साथ हमारे पास अली का मैसेज भी आया है। अली कहते हैं कि मेरे ख्याल से ऑप्शन ए है फातिमा बाजी। ओके अली, आपका ऑप्शन भी हमने नोट कर लिया है। अरीब भी हमें मैसेज करते हैं और अपना जवाब लिखते हैं। ऑल राइट, तो मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो अब देखते ये हैं कि इसमें से खुशनसीब कौन है। तो जल्दी जल्दी मैसेज करें, अपना जवाब हमसे शेयर करें, नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर जरूर करिएगा शेयर, एंड देन वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक।

Yes, my friends, so I am back again. जी हाँ, म्यूजिक भी आप सुन रहे हैं, साथ ही साथ क्विज में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और सही जवाब देने वाले पांच खुश नसीब जो हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम से गिफ्ट हैम्पर्स जीत सकते हैं। और आज का सवाल हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जी हाँ, शोबे कंपनी के बानी डॉक्टर बिल्मा शोबे किस शोबे से ताल्लुक रखते थे? इसका ऑप्शन ए है केमिस्ट, ऑप्शन बी फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी एलोपैथिक डॉक्टर, ऑप्शन डी बॉटनिस्ट। इसका जवाब देने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पर, लेकिन मेक श्योर कि आपने अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर हमसे जरूर शेयर करना है। और शहनीला का भी मैसेज आ चुका है, उन्होंने अपना ऑप्शन लिखा है एंड द गुड थिंग इज दैट कि उन्होंने अपना नाम भी लिखा है। वेरी गुड जी, जबरदस्त हो गया है, ये सही तरीका कार है। इसलिए जो जो लोग अपना नाम के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहे हैं, हम उन्हें जरूर जो है वो अप्रिशिएट करें। दिस इज वेरी गुड। ऑल राइट, जरीनूर ने भी हमें जवाब दिया है, कहती है सवाल का जवाब है ऑप्शन बी और साथ ही साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। ऑल राइट जी, सो हमारे पार्टिसिपेंट्स काफी एक्टिव हो रहे हैं और सही तरीका कार के जरिए हमें मैसेज भी कर रहे हैं, सो दैट्स ग्रेट। तो अब एक्साइटमेंट ये है कि जी ये जानना है जरूरी कि कौन है विनर, तो इसका तो पता आपको चल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको करना है फुली पार्टिसिपेट और अपना जवाब देने के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर करना है। रिजवान ने भी हमें मैसेज किया था, लेकिन एज ए टोल्ड हिम बिफोर कि भाई आपका हम नहीं शामिल कर सकते क्योंकि आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमसे शेयर नहीं किया है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर हमसे शेयर करें। और अभी हम आपके साथ मौजूद हैं, तो सवाल दोहराते भी रहेंगे ताकि आपको याद रहे और आप अपने तौर पर सही जवाब देने की पूरी कोशिश भी करें 3636 पे, क्योंकि हम आपके साथ मौजूद हैं और आपके सही जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ट्रैक की जानिब चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe's Single Remedies, Germany.
1: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311111 7837.
3: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
4: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं.
5: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
4: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
5: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाएं,
3: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें.
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

Alright जी my friends, so I'm back again और उसी के साथ साथ इतला के लिए अर्ज है कि जी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है क्योंकि वक्त जो है वो बड़ा तेजी से गुजर रहा है और आपके पास ये कुछ लास्ट मिनट्स ही मौजूद हैं जिसमें आप अपना सही जवाब देकर जो है वो गिफ्ट हैम्पर हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त आपके साथ खेला जा रहा है एक अदद क्विज डॉक्टर हमीद जनरल होमी और शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी की जानिब से। आप सबके लिए एक सवाल, सही जवाब देने वाले 5 खुशनसीब सामाइन को गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे और ये मौका भी आपके पास मौजूद है। बिल्कुल लास्ट का ये टाइम है, अगर आपका जवाब सही हुआ तो जी हाँ आप गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। सवाल हमारा आपसे ये है कि शोबे कंपनी के बानी डॉक्टर विल्मा शोबे का ताल्लुक किस शोबे से था। ऑप्शन ए केमिस्ट, ऑप्शन बी फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी एलोपैथिक डॉक्टर, ऑप्शन डी बॉटनिस्ट। इसका जवाब देने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे और जवाब देने के साथ साथ जो है वो आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपका जवाब ठीक है या नहीं है। इस वक्त बड़ी टेंशन हो रही होती है और मैं समझ सकती हूँ। इस वक्त हमारे पास मैसेज आया है लुक वर्ल्ड का, कहती है मेरा जवाब कभी ठीक नहीं होता शनीला। यू नेवर नो, हो सकता है इस दफा आपका जवाब ठीक हो भाई, लेकिन सब अपने तौर पर जवाब दे रहे हैं। हमारे पास एक और मैसेज भी आ चुका है जायरा का, ठीक है जी जायरा आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है एंड लेट्स सी के आप सही जवाब है या नहीं है। हमारे पास और भी मैसेज आए हैं जिन्होंने ऑप्शंस तो हमें भेजे हैं लेकिन अपना नाम नहीं शेयर किया, सो ये थोड़ा इशू है कि भाई अपना नाम जरूर लिखें। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है वो अलीना का भी मैसेज आया। अलीना कहती हैं कि आप ही मुझे ऑप्शन ए लग रहा है और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। ऑलराइट जी अलीना, ठीक है जी आपका जवाब भी नोट कर लिया है। अलीना के साथ साथ हमें असद भी मैसेज करते हैं और असद कहते हैं कि मुझे ऑप्शन सी लग रहा है। ओके भाई, बैक टू बैक हमारे लिसनर्स एक्टिवली इस गेम को प्ले कर रहे हैं एंड लेट्स सी हु इज द विनर। सो कीप प्लेइंग विद अस, 3636 पर मैसेज करें अपना सही जवाब और अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो चलें जी इस दौरान आपको हम ट्रैक भी सुनाते हैं, आपको मोटिवेट भी रखते हैं। यू नेवर नो कि आपका जवाब ठीक है या नहीं है। सो एंजॉय एंड देन वी विल बी राइट बैक।

Yes, my friend. So I'm back again, and now we have very, very less time. जी हाँ, लेकिन मैं एक बार फिर से सवाल दोहराऊं तो चलें दोहरा देते हैं कि जी हाँ, डॉक्टर हमीद जनरल होमियो शॉप सिंगल रेमेडीज जर्मनी की जानिब से आप सबके लिए एक सवाल, सही जवाब देने वाले 5 खुशनसीब सामान को गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। और शोबे कंपनी के बानी डॉक्टर वल्मा शोबे का ताल्लुक किस शोबे से है? ऑप्शन ए केमिस्ट, ऑप्शन बी फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी एलोपैथिक डॉक्टर, ऑप्शन डी बॉटनिस्ट। इसका जवाब देने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, किए चाहे लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। और हमारे पास जवाब आया है, आयशा भी हमें मैसेज करती हैं। आयशा कहती हैं, आप ही, मैं कराची से ताल्लुक रखती हूं, अपना नंबर लिखकर कहती हैं, आप ही, आई एम श्योर ऑप्शन सी है। बिल्कुल ठीक है आयशा, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। साथ ही साथ हमें अरबाज भी मैसेज करते हैं, अरबाज कहते हैं आप ही, मुझे लगता है कि ऑप्शन सी है, आई डोंट नो ये सही है या नहीं है। ओके जी, आपने अपनी तरफ से जवाब तो हमें दिया है। और हमारे पास एक और मैसेज भी आया है, इन्होंने लिखा है ऑप्शन ए और अपना नाम नहीं लिखा है। लेकिन चलो जी, आप सबके जवाब हमने नोट कर लिए हैं और इन 5 खुशनसीब लोगों को पता चल जाएगा कि कौन है विनर। जी हां, आपको जल्द ही कॉल रिसीव हो जाएगी। सो हमारे प्रोग्राम से हमने 5 खुशनसीब लोगों को चुन लिया है। अब लेट्स सी कौन खुशनसीब है, उनसे कर लिया जाएगा कॉन्टैक्ट। अनटिल एंड अनलेस रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल टुमारो।

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: वीकली लकी ड्रॉ विनर प्रखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
0: This program is brought to you by
4: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 03111117837.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

FM 100 stand check. It's 3 p.m. This transmission is brought to you.

0: FM 100's time check. It's 3 p.m. This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: This program was brought to you by
3: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: your location for maximum music. This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
5: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365

जो तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझमें क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और या तुम अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।

0: FM 100's time check. It's 4 p.m. This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जरा बहन जरा बात तो सुनो हटो पीछे भागो अहमद हटो वहां से
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम लें सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
3: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100
0: 31 saal fm100 aapki awaaz assalamu alaikum pakistan
3: assalamu alaikum pakistan

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
4: This is your music.

0: Root FM, your location for maximum music.
1: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है. और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत ज़वाबित लागू है.
1: This program is brought to you by
5: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
1: and
6: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
1: and
7: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
1: and
8: Tabal family mixture laye umrah par jaye
1: and
2: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
4: and HBL islamic safar hajj mein aapka khidmat guzar
1: and
9: try all new vatika shampoo nourishes hair naturally
10: fm 100 like us on facebook.com/fm247365
11: fm 247365

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइतों से वाबित लागू है।
3: 11.99%।
7: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें, या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
1: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने अमल का तरीका है।
2: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
3: मजीद मालूम के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
5: क्या कहा? ईवी बाइक जीतने का मौका। जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन व्हिच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
7: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
8: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
4: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
9: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
10: सर सब्स नाइट्रो फॉस को लगा और जीत ताजा
11: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
3: एंड वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
12: एंड
13: कबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
12: एंड
0: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
4: एंड HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार
11: एंड ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
14: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365

0: your location for maximum music. It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe's Single Remedies, Germany.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99% 100 FM
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: FM 100 traffic update.
1: के साथ मैं हूँ फारूक अज़हर। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की इस वक्त सूरतहाल कुछ इस तरह है। कयूमाबाद चौरंगी से वो ट्रैफिक जो इस वक्त बलोच कॉलोनी ब्रिज की जानिब आ रहा है, उस पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव है। गाड़ियां बम्पर टू बम्पर मूव करेंगे। वो तमाम लोग जो बलोच कॉलोनी की जानिब आना चाहते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल से आगा रहे हैं। टावर से वो ट्रैफिक जो आरामबाग और वहां से एमएजीना रोड की जानिब जा रहा है, उस पर भी ट्रैफिक का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। लिहाजा वो तमाम लोग जिन रस्तों में सफर करना चाहते हैं वो अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए एफएम 100 पाकिस्तान।
0: एफएम 100 ट्रैफिक अपडेट।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है. शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां.
3: सफर हज एक मुकद्दस सफर और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है. हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है. और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से ज्यादा आउटलेट्स के जरिए. HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार. शराइत ज़वाबित लागू है.
0: This program is brought to you by
4: Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
0: and
5: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
6: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
0: and
7: Tabal family mixture laye umrah par jaye
0: and
1: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
3: and HBL islamic सफरे हज में आपका खिदमत गुजार
0: एंड
8: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक द प्रीमियर इस्लामिक बैंक
0: एंड
9: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली.
10: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
11: FM 247365

दुनिया से बेखबर जो कहना था कहने दे आंसू ये बहने दे यार बोले दे खबर बोल खोल दे हम जान भी दे देंगे तेरे कहने पे वक्त पूरा ना हो बेसबर मेरे लफ्ज़ तुझ पे

तरफ मैं चिखल बली ने लगा कहानी मेरी सिर्फ दर्द भरी हासिल मुझे बर्तरी होने लगी हर बड़ी खुद की कमाई पैनी गड़ी वो भी बर्बरी अभी मजबूर नहीं लेकिन चली लग बड़ी आके मेरे पैर पड़ी जिंदगी थी सैर बड़ी सीखे हम गिर के चाहिए सबके खैर बड़ी गहरे समंदर हम लेके चले।

कहां निकल चुका खुद की तलाश में, आते ख्याल खुद को रोक ले दकाश में, करके तमाशे तेरा दिल को दिला से, जबकि जानता हूँ खुद को मैं अच्छी तरह से, कैसे हट जाता पीछे मैं अपनी जगह से, कैसे छोड़ देता जीता मैं जिस

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabis Single Remedies, Germany.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99% 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: 100 FM।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
7: 100 FM।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
10: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है, और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदें HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
11: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja,
0: and
12: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
0: and
2: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye,
0: and
11: Tabal family mixture laye umrah par jaye,
0: and HBL freedom account, jahan khwab wahan HBL,
10: and HBL Islamic, सफर हज में आपका खिदमत गुजार,
0: एंड
11: पाकिस्तान का बेस्ट बैंक निजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक,
0: एंड
9: ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
7: 100 FM।
13: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फिकार, एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। वी ऑल ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, बट ड्रग्स are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

across the nation, there is only 100 FM. Yeah, 24/7, only on one.

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Azra behen, zara baat to suno. Hatu piche, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
3: 11.99%
4: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइतों से वाबित लागू है।
3: 11.99%।
7: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
10: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
11: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदे HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत और ज़वाबित लागू है।
12: क्या कहा, ईवी बाइक जीतने का मौका? जी हाँ, मंडे से संडे किसी भी 3 दिन इजी पैसा QR से पेमेंट करें और पाएं ईवी बाइक जीतने का मौका, साथ ही साथ 100 रुपए का गारंटीड कैशबैक। तो फिर देर किस बात की, आज ही इजी पैसा QR स्कैन करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
11: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदे HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत ज़वाबित लागू है।
13: वाजिदा वीकली लकी ड्रॉ विनर, सखर से जीती है सादिया गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
14: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमात, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
0: This program is brought to you by
14: Pakistan ka best bank, Mizan Bank, the premier Islamic bank.
6: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
15: Nasha apni pareshaniyan khatam karta hai.
9: ساس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے، یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
15: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
16: FM 24/7/365

0: You know what's out here on the street? Tonkara! Tell them!
1: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabes Single Remedies, Germany.
3: Azra behen, zara baat to suno. Hatu bhi, bhago. Ahmed, hatu wahan se.
4: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम ले। सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
5: 11.99%
6: ओ भाई, क्या है ये 11.99%?
7: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइतों से वाबित लागू है।
9: 11.99% 100 FM।
10: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: 100 FM।
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: 100 FM।
11: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदे HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू है।
9: 100 FM।
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: 100 FM।
11: सफर हज एक मुकद्दस सफर, और इस सफर में एक भरोसेमंद मुनज्जम जरूरी है। हज 2027 का एक्सक्लूसिव हज बैंकिंग पार्टनर HBL इस्लामिक मंजूर शुदा मुनज्जमीन के साथ मिलकर प्राइवेट हज की वसूलियों और बैंकिंग को आसान बना रहा है। और इस मुबारक सफर के लिए सऊदी रियाल बा आसानी खरीदे HBL करेंसी एक्सचेंज की मुल्क भर में मौजूद 70 से जायद आउटलेट्स के जरिए। HBL इस्लामिक, सफर हज में आपका खिदमत गुजार। शराइत जवाबित लागू है।
1: This program is brought to you by
12: Pakistan ka best bank, Mizan Bank, the premier Islamic bank.
8: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Karibi HBL branch chalo ya apply karo online.
13: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
14: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
15: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت
3: صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائے۔
14: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے۔

0: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या?
2: मैं ओबेसिटी का शिकार सिर्फ फॉक्स से ही कम हूँ।
0: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
1: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
0: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
2: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
1: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
2: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम ज़राए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाज़मीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसमवेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई? महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मुहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक न करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मुहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद न करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम PTA।
5: ये मुफाद आमा का पैगाम आप सिर्फ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
6: FM 24/7/365

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात और नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: This program was brought to you by Pakistan ka best bank, Mizan Bank, the premier Islamic bank.
3: This transmission is brought to you by
4: Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: This program is brought to you by
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HP और ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
2: FM 247 365 FM 100।
1: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: This program is brought to you by
1: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HPL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन.
0: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies Germany.
2: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही. आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है. ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफरूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं. एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है. इंसदारे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है. आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं. 26 जून आलमी दिन बराए इंसदारे मंशियात.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: Club mixes.

0: streaming on the internet.
1: 24 hours.
0: This is FM 100.

Hello, mic check 1 2 3. Assalamualaikum and Assalamualaikum Pakistan. Sabhi sunne walon ko yahan se Ahmed ki janib se aadab. Kaise mizaj, kaisi tabiyat? Tabiyat apni to zara si sukoon wali hai. Kal asraat lag rahe the bukhar ke aur fever jo hai raat ko tika ke. Lekin aapka bhai bhi dheet hai. तो थोड़ा सा मैं माजरा चाहूंगा, मेरी अगर आवाज एनर्जी कम बुखार वाली साउंड दे रही है, एडवांस में माजरत भाई। जनाब सुन रहे हैं एफएम 100 अयाज अहमद के साथ, और मेरे साथ जनाब नदीम अंसारी मौजूद हैं। अंसारी भाई आदाब, और से कैसी तबीयत? ठीक है यार। इसे हमारे इंजीनियर बिलाल साथ हैं, और इसके अलावा उस्मान द ग्रेट हमारे टेक्निकल हेड, बहुत ही प्यारा सा हमारा भाई, और इमरान भाई भी आ जाते हैं गर्मा गर्म चाय। आज इमरान भाई बहुत याद आ रहे हैं, ऐसे ही नजर आएंगे, बोलूंगा जरा गर्मा गर्म चाय ला दे ताकि एनर्जी बनी रहे। ये पाकिस्तानियों की खास बात है, काम बाद में शुरू करेंगे, खाने पीने की बातें पहले, ये क्वालिटी है। मैसेज करने का तरीका बता दूं, KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड कर देंगे 3636। इत्मीनान से ड्राइव करें, सुकून के साथ ड्राइव करें, घर में है तो भी इंसानों की तरह रहें, लड़ाई झगड़ा है तो यार दूर कर दो यार, प्यार से मोहब्बत से रहो यार, घर में जो है ना घर के माहौल को खराब नहीं होने दो, तकलीफें मसले मसाइल ये सब जिंदगी का हिस्सा है, पैसे होना महंगाई ये सारी चीजें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इसको उतारी मत करो, बुरा वक्त भी गुजर जाता है, जिस तरह अच्छा वक्त गुजरता है बुरा वक्त भी गुजर जाता है, दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मैं जनाब लेक्चर कम करता हूं मैं, और आगाज करता हूं इस खूबसूरत ट्रैक से।

0: It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.
3: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी. एक समझदार माँ बनेगी. सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी. आने वाली नस्लें संवारेगी. एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी. पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है. लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
4: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं. जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी साथ तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फॉर्म, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: Us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365. Active.

जनाब वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ ही साथ जनाब मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं एचआर स्पेस टेक्स्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं 3636 पर। बिलावल भाई मैसेज कर रहे हैं सबसे पहले 3636 पर गिजरी से। अयाज भाई आपको, सुम्बल जी को, कादिर भाई को और तमाम प्यारे लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिजाज शरीफ, अल्लाह का करम है, हर हाल में शुक्र। अच्छा जी, इसके अलावा पीर एम इलियास भी आ गए हैं। अयाज भाई आई होप यू आर ओके। सर ओके ही हूं वैसे, एंड गुड। प्लीज प्ले हम तुम होंगे बादशाह, कल मैंने प्ले कर दिया, किन्नी बारी चौधरी साहब, कल प्ले कर दिया मैंने हम तुम होंगे बादल हो गए, अब तो बादल निकल गए दूर, अब उनका मैं पता करा रहा हूँ कहाँ निकल गए वो, जैसे ही पलट के आएंगे मैं आपके लिए प्ले कर दूंगा। सलाम, कैसे हैं? बहुत दुआ आपके लिए और सबको सलाम। जरीनूर, वालेकुम अस्सलाम, दूर से सुन रही है हमारी बहुत ही प्यारी सी दो। नादिया मलिक यूके से, नादिया क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? कह रहे कोई नहीं, आवाज बिल्कुल सही आ रही, ये होती है दोस्ती। आवाज खराब भी आ रही तो जरा हौसला बढ़ाने के लिए नादिया ने कह दिया, थैंक यू नादिया। और ये ट्रैक पहला वाला इनको बहुत पसंद आ गया, जरा डिफरेंट। बस भाई इस शो में मैं कोशिश करता हूँ तो जरा डिफरेंट डिफरेंट चीजें अच्छी हूँ, मेन बात ये पसंद आया आपको। और जनाब हमेशा की तरह संजू आ गई। संजीदा क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? और जनाब कह रही है कि वेलकम कर दिया भाई बड़े अच्छे अल्फाज में, तबीयत कैसी, दुआएं हैं? बहुत शुक्रिया संजीता, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर बाद ये करने का दिल कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा कह रही कल भी शो बहुत कामयाब था माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी संजीता, जो आप सर्टिफिकेट दे दी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कसम से, इतने गौर से सुनती है और इनकी बात में वजन भी होता है, ये बात है। पहला ही सॉन्ग भाई पसंद आ गया इनको भी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, क्या बहुत शुक्रिया संजीदा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब जब माहौल ऐसा बना हुआ है, एक और छोटा सा गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। हाय हाय।

हाँ जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं 3636 पर। और जनाब वाला आप लोग मैसेजेस बिल्कुल करते रहे। एंजेलिना, आपका मैसेज आ गया। किंग अयाज, आपको सलाम। बिलावल, नौरीन, जनी और सारे रिसर्च को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि आज आप आओगे। एंजेलिना ऐसे मत करो यार, छुट्टी करता हूं मैं लेकिन इतनी भी नहीं करता, ऐसे ना करो। पीर एम इलियास, वैसे तबीयत ऐसे थी, दिल चाह रहा था थोड़ी छुट्टी कर लूं लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार छुट्टी ना करें। अच्छा जी, एम इलियास कह रहे हैं, यास भाई एज यू लाइक, आई विद यू। अल्लाह नहीं करो, आप ग्रेट हो। बेस्ट विशेस विद योर हेल्थ। भाई बड़ी मेहरबानी एम पीर इलियास। और हमें यूएसए से असफर भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं। असफर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या बात है असफर भाई, हमेशा की तरह एवरग्रीन। दिन ब दिन छोटे होते चले जा रहे हैं लोग, बुजुर्ग हो रहे हैं, ये जवान हो रहे हैं, माशाल्लाह क्या बात है। असफर भाई हमारे बचपन के दोस्त। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, गर्मा गर्म चाय लेके, इसकी बहुत जरूरत है। भाई जनाब नेक्स्ट ट्रैक, और वो है कैसे

मुंबई जनाब सुन रहे हैं FM 100 अहमद के साथ और साथ साथ कर रहे हैं मैसेजेस के चार स्पेस टेक्स्ट करेंगे सेंड करेंगे 3636 पर। गयासुद्दीन बलबन मुल्तान से मैसेज कर रहे हैं, दुआएं दे दिए कि जल्द सेहतमंद हो जाए। सबको सलाम, पूरी टीम को सलाम। वालेकुम सलाम गयासुद्दीन बलबन। रमजान पठान का मैसेज आया, आज भाई आपको बिलावल संजो सब ले सको सलाम। आज तो रहीम शाह, ये बेहोश हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, रहीम शाह का गाना नहीं लगाया बेहोश हो जाएगा यार। अच्छा किसी को बताना नहीं, मैं ढूंढता हूँ कोई, लेकिन जो फरमाइशी की है नहीं, रहीम शाह का कोई ढूंढ के लाता हूँ। और भाई जनाब कुछ सेकंड की ब्रेक, मिलते ब्रेक के बाद।

क्या बात है जनाब, जबरदस्त ये ट्रैक। और इस ट्रैक को सुन के ना आपको एक और गजल याद आ रही होगी, वो भी मैं थोड़ी सी सुना देता हूँ आपको। लग रहा है कि इंस्पिरेशन इससे, थोड़ी सी सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं।

0: party that won't end.
1: Oh, so loud.
0: Here we go. Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11.
2: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabes Single Remedies, Germany.
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी. मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है. इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं. अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें. गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें. लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें. मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट KSGO रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें. मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है. इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे. सर्विस कॉल करने के लिए जेड सेल कोड्स डायल करें. जेड सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#. अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए.
7: ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
6: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए. याद रखें, अगर आपके जहर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंजूर कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है. लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं. शनाख्ती कार्ड की मंसूखे से मुतल्लिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रुजू करें और इस बात को यकीनी یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو. اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزیز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں. شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پر عزم ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی.
8: FM 247365 Active Yummy Adorable Zabardast Sahi Pyaas to suno yaar.

पर जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस आपके पहुंच रहे हैं 3636 पर। अच्छा जी एंजेलिना क्या कह रही भाई, बिलावल तुमने रमजान भाई को सलाम का रिप्लाई तो दिया, मेरा नाम लिखते हुए क्या तुम्हारे हाथ दर्द करते हैं? लिखा उन्होंने, पूरा नाम लिखा है एंजेलिना को सलाम, क्या करे बेचारा बिलावल, मुझे ये बताएं आप। तो आपके पास इसका हल हो तो मुझे बताएं, हमने पढ़ा भी। एंजेलिना आपका नाम सुनते ही मेरे ख्याल से कान बंद हो जाते हैं, क्या चक्कर है, क्यों नहीं तुम्हें अपना नाम सुनाई दे रहा? नादिया जी क्या बात है, यूके में सुन रही है, कह रही थोड़ा थोड़ा जरा प्रॉब्लम हो रही है, अभी बंद हो जाती है। नदीम अंसारी को कहेंगे जरा चेक करें ट्रांसमिशन, कह रहे हैं यूके में जरा आ रही है और जा रही है, नेट देखते हैं हम जरा रिफ्रेश मारते हैं। अच्छा जनाब गाने पसंद कर रही हैं चुपचाप संजीदा जी। अच्छा भी अब जरा था टेम्पो फास्ट करते हैं और शामिल करते हैं इस, आया थोड़ा सा डांस भी हो जाए मेरे ख्याल।

हैं ना, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी आपके पहुंच रहे हैं। अच्छा जी, फरीन शहजादी भी आ गई। फरीन कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट लेजेंडरी आज आ रहे हैं। नहीं सरकार, इतनी तारीफें कर देते हैं, मैं बस क्या बोलूं आपको। और कह रहे हैं भाई, अदाकार खूबसूरत शख्सियत के मालिक, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। और चाय आपने जो है ना वो रख दी, मैं पी ली मैंने। इमरान भाई बहुत मजे की चाय बना के लाए आज। अच्छा जनाब, इसके अलावा बिलावल कह रहे हैं मजेदार सॉन्ग चल रहे हैं जनाब, आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। आज मैंने रखे हैं वैसे दो चार ऐसे गाने। सलाम अयाज, ये कौन सी जबान में बम बम? अरे यार ये जबरदस्त जबान है। ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये गाना मैंने, स्पेन की टीम जब वापस पहुंची ना तो उनका इस्तकबाल हो रहा था, ये गाना मैंने उधर सुना फर्स्ट टाइम, तो तब से मुझे अच्छा लगे। क्या डांस कर रहे थे वो प्लेयर्स, लेकिन जबरदस्त खूबसूरत सॉन्ग इंग्लिश मुझे डेडिकेट करते हैं। अच्छा जनाब मैं कर दूंगा, बल्कि मैं एक आपको क्लासिकल इंग्लिश गाना, मैंने उसमें देसी टच भी दिया है, वो मैं आपको मजी अभी थोड़ी देर में डेडिकेट करता हूँ। नादिया मलिक की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कह रही है अब ठीक हो गया, चलो ये अच्छा हो गया, रिफ्रेश हो गया भैया, अब आप आराम से सुन सकती हैं। और हमारी मिसेस फारूक तशरीफ ला चुकी है। मिसेस फारूक क्या हाल है आप? गुड इवनिंग, कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, सॉरी मत किया करें आप, जाहिर सी बात है बिजी रहता है इंसान, काम में बिजी रहता है, लेट हो गई तो क्या हुआ। और शुक्र आपकी तबीयत से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं आता हूं तो यहां जब आया था तो लेजी लेजी था, लेकिन यहां आने के बाद तबीयत फिट हो गई है। हुमा जी, हुमा सिद्दीकी, आपको ये गाना मैं डेडिकेट कर देता हूं। और मिसेस फारूक आपके लिए भी, जरा चेक करें आप इस गाने को।

समाज जनाब वेलकम बैक, सुन रहे FM 100 आयाज अहमद के साथ। और जनाब सुंदर समय सुन रहे सुंदर, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से है। नेक्स्ट गाना सुंदर जी को भी डेडिकेट करना है। और नादिया मलिक भी हमें सुन रही है, कह रही है वेरी यूनिक सॉन्ग है। वैसे बाकी यार डिफरेंट भी है, बड़ा मजे का ये ट्रैक। और क्यू शीट में आज हमने शामिल किया, मिसेस फारूक को तो बहुत पसंद आ गया। हुमा जी आप बताएं आपको कैसा लगा? अच्छा जनाब एक और ट्रैक की जानिब बढ़ते हैं और सुंदर जी इनको कर देते हैं डेडिकेट, और वो है कैसे

हाय हाय क्या बात है, दूरी सही जाए ना, क्या बात है इस गाने की भी। और पीर एम इलियास कहने अयाज भाई गुड जॉब नाइस शो आई लाइक इट। आज मैंने बेगम को क्या किया भी? बेगम के लिए गाना कुछ मेरा ख्याल से कहना चाहे मैं कर दूंगा सर, उनको डेडिकेट कर दूंगा आपकी बेगम। अच्छा जी तानिया जी हमें सुन रही है, तानिया कैसी हैं आप? स्वीट सी प्यारी सी तानिया फैमिली के साथ घूम रही है और बाहर है। मैंने कहा बेटा आप इसे बाहर ना निकल जाना, लेकिन इंजॉय करें जनाब इंजॉय करें। स्वीट सी है और गाना भाई इनका बड़ा फेवरेट है, लेकिन आज क्यू शीट में शामिल नहीं है। समी मेरी बात, दिल चाह रहा था मैं डेडिकेट कर दूं आप। जरा ये वाला ट्रैक चेक करें जरा।

हुआ जनाब, वेलकम बैक। काफी फास्ट ट्रैक में आपको सुना रहा हूँ, अब जरा स्लो नंबर भी शामिल करते हैं। इतनी देर में जरा रुबाब का मैसेज पढ़ लूँ। सलाम, क्या मेरा मैसेज पढ़ना मना है क्या? रुबाब हमेशा जो है ना बस तंज कर देती हो, तुम इतना नाराज रहती हो, क्या फनी खराबी है तुम में, क्या है ऐसा मसला? अच्छा मेरे ख्याल से ईरान कह रहे हैं गई हुई हूँ, आधे घंटे का फर्क है बेटा, हेलमेट पहन के घूमना, कुछ पता नहीं वहां क्या हालात हो, लेकिन अपना ख्याल रखना है आपने। संजीदा जी खुश रहे आप, और मिसेस फारूक, मिस्ट्रेस फारूक खुश रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, गाने पसंद आ रहे हैं भैया। राजी नेक्स्ट ट्रैक की जानिब बढ़ते हैं, और नेक्स्ट गाना जो है मैं आपको सुनाने लगा हूं। यार क्या शायरी है इस गाने की, और क्या ट्रैक है, जरा स्लो लेकिन बहुत ही कूल। हाय हाय हाय,

हाँ जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 अयाज अहमद के साथ और साथ ही साथ मैसेजेस 3636 पर। अच्छा जी, यूके से नादिया मलिक क्या कह रही हैं? आई गिवन 3 तलाक टू पाकिस्तानी क्रिकेट लॉन्ग टाइम अगो, दे डोंट डिजर्व अवर टाइम एंड एनर्जी। भी बड़ी पक्की और पते की बात कर दी आपने। इतना लोग जो है टाइम भी खर्च करते हैं, पैसे भी खर्च कर रहे होते हैं, स्क्रीनें लगा के देख रहे होते हैं और एंड में रिजल्ट क्या? जीरो। सही किया आपने, बिल्कुल सही किया। वैसे तो टाइम के अलावा हम लोगों के पास कुछ है भी नहीं, लेकिन क्यों भाई? और वो कहनी इमरान खान के बाद, इमरान खान नहीं उसके बाद भी बड़े अच्छे जबरदस्त टीम बनी। वसीम अकरम का दौर भी अच्छा था, इसके अलावा और भी अच्छे। कुछ टाइम जो है वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी थी यार, तो ऐसी बात नहीं, अच्छा था। आज सुंदरस कह रही है टुडे सॉन्ग्स आर गुड, थैंक यू वेरी मच सुंदरस जी। और संजीता क्या कह रही भाई? इस सॉन्ग को किसी और शो में द्वार मैं इसी तरह के, मेरे पास एक भरमार है इस तरह के क्लासिक गानों की जिनकी शायरी ऐसी जबरदस्त होती है। ये मैंने आपको सुना, एक और भी है मेरे पास थोड़ी सी देर में। अच्छा जी, आपके शो की शान हमेशा से मुनफरिद सॉन्ग की वैरायटी होती, बस वैरायटी के चक्कर में मैं लगा रहता हूं। अच्छा जी अयाज, आज तो आप आंखों के शायरी पर सॉन्ग प्ले कर रहे हैं जबरदस्त। आंखों पे ही लोगों ने गाया ज्यादा, और किसी चीज पर उन्होंने गाया नहीं, बढ़ने में लगा देता वो दिल फेफड़े गुर्दे, आंखों पे ज्यादा। जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जानिब जल्दी जल्दी, और ये यार ये भी अच्छा गाना है। हाय हाय रंगीन

वही जनाब सुन रहे FM 100 आयाज अहमद के साथ। क्या ट्रैक है भाई, जबरदस्त। चाची आ गई है हमारी प्यारी सी। चाची जी कैसी तबीयत है आपकी? शादी बर्दाश्त करने का नाम है, सैक्रिफाइस का नाम है, नॉट शॉपिंग, होटलिंग और हल्ला गुल्ला। गुड गल की थी तुसी, गुड गल की थी। चाची के तजर्बात क्या कहने, अलग ट्रैक का सॉन्ग है। हाँ जी, डिफरेंट है। हाँ ये भी जरा सुना हुआ गाना है, लेकिन जरा चेक करें आप, थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको मैं। हाय हाय हाय, क्या बात है।

है जनाब, सुन रहे FM 100। जल्दी जल्दी गाने सुना रहा हूँ, बहुत आज मजे की क्यूशीट बनी हुई है और मिस्टर फारूक को तो बहुत पसंद आ रहे हैं। और संजीदा जी बहुत शुक्रिया। और अयाज सिंपल इंग्लिश ट्रैक है तो वो भी लगा दीजिए, जैसे बीजीज, मैडोना, सरकार एक अच्छा गाना। मैं आपको थोड़ी सी देर, जरा सा ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इंग्लिश ट्रैक जो है वो हुमा जी आपको मैं डेडिकेट करता हूँ। चल रहे सज्जाद अली का वैसे ये गाना है।

0: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.
3: Active,
4: yummy,
3: adorable, seven.
4: Kya pyaas to suno yaar.
5: जना वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और चाची मेरी क्यूट से मैसेज भेजे जा रही हैं। लो फ्लेम पर खाना भी अच्छा पकता है, नॉट हरी। बाकी सुकून जिंदगी में होना चाहिए। और आगे बड़े तवील मैसेज लिखे हुए हैं। चाची आप आएंगी ना, जरा खुद से बताएंगी तो ज्यादा मजा आएगा। मैं तो फिर जरा अपने स्टाइल में पढ़ देता हूँ, वो कॉमेडी में चला जाता है बात। हाँ जरा सीरियसली। अच्छा जी, नाइस सॉन्ग जरीनूर, बहुत शुक्रिया। क्या बात है जानिया, आपको मिस यू सॉन्ग गुड, हम रो दिए जानी। कौन है ये आदमी जो रो रहा है, नाम तो लिखो। बिलावल कह रहे हैं इंशाल्लाह हमारी टीम दोबारा विक्ट्री ट्रैक पर आएगी। आमीन, बस दुआएं कर सकते हैं और तो कुछ नहीं। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। आए हाय मिस्टर फारूक, क्या कहने इतना। आई हैव नो वर्ड्स, स्पीचलेस। नहीं करें सरकार। जी नेक्स्ट ट्रैक की जानिब बढ़ते हैं और हुमा जी इंग्लिश ट्रैक की रिक्वेस्ट करती हैं, उनको मैं डेडिकेट कर देता हूँ। और साथ में मिस्टर फारूक आपके लिए भी ये गाना स्पेशली, और वो है कैसे।

और जनाब सुन रहे FM 100 आयाज अहमद के साथ। और जनाब नादिया जी बहुत शुक्रिया, कह रही है आउटस्टैंडिंग सिलेक्शन। चलो यार ये अच्छा है जो मेहनत के साथ क्यू शीट बन रही होती है। आप लोग बता देते हैं। और मिसेस फारूक बहुत शुक्रिया आपका इतना सारा प्यार, इतनी सारी मोहब्बत देने का। अच्छा जनाब इसके अलावा अनाया आ गई है। अनाया जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? इतनी तारीफें कर दी आपने, चम्मा आ लिया मुझे तो। सो स्वीट ऑफ यू। कहती हैं कि भाई आप तो जान हैं FM 100, बस छुट्टियां थोड़ी कम कर दो। शिकायत भी कर दी। मैं क्या करूं था? काम और भी होते हैं ना। वाह जनाब हुमा जी गाना पसंद आया कि नहीं? एक और हिट गाना। गयासुद्दीन बलबन थैंक यू, ऑसम प्लेलिस्ट। गयास आप ही को डेडिकेट कर देता हूं। बायरो म्यूजिक 7

है जनाब, जबरदस्त ये ट्रैक सिक्वेंसर, क्या बैंड था जबरदस्त ये बैंड। और साथ साथ मैं आपको ये एक और ट्रैक भी सुना दूं जल्दी से। हाय हाय,

बिलावल भाई बहुत शुक्रिया, गुड प्ले लिस्ट, ब्यूटिफुल सॉन्ग। और नौरीन तौसीफ क्या कह रही है, जरा सा और इस म्यूजिक को बढ़ा लेते हैं। कह रहे हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, मिजाज कैसे? मिजाज मेरे बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा क्या कह रहे हैं भाई, कहाँ चला गया? अच्छा जी, और डिनर से फारिग होने के बाद आपका शो इंजॉय कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हुमा जी आ गई, और हुमा क्या कह रही है भैया? चल रहने दे, अनब्रेक माय हार्ट। अच्छा जनाब, जबरदस्त याद आ गया, चले गाने पसंद करने का शुक्रिया। तानिया जी कितने रह गए तुसी? तानिया जी है ना, शाम में घर से बाहर घूम रही हो यार। बाहर के खाने खाने से तबीयत तो नहीं खराब हो रही? रोज भी बंदा बाहर के खाने खाए, तबीयत जो है ना वो जरा गड़बड़ हो जाती। क्या कहते हैं आप, घर का खाना भी बहुत जरूरी है भाई। यासुद्दीन कह रहे हैं भाई बहुत शुक्रिया गाना डेडिकेट करने का, मोस्ट वेलकम जनाब, मोस्ट वेलकम। गाने बहुत सारे हैं लेकिन मैं क्या करूं, टाइम जो है वो कह रहा है कि टाटा बाय बाय भी थोड़ी देर में करने हैं। ये जरा चेक करें आप, ये सरमत साहब ने भी गाया लेकिन इन खातून ने भी बहुत अच्छा गाया, चेक करें जरा।

0: party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany.
3: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोर्ट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद

रहने देना आप, जबरदस्त शायरी। और अच्छा ये गाने जो है ना बड़े दिल को छू जाने वाले गाने हैं। एक और भी इसी तरह का मैंने ट्रैक रखा हुआ था, जाते जाते ये भी थोड़ा सा सुना देता हूँ। और क्या कहने, संजीदा जी बहुत खुश हो रही हैं और मिस्टर फारूक भी।

वेलकम बैक, सुनो दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप आप सबको भी आया होगा पसंद। मैसेजेस कर सकते हैं आप के एच आई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड करेंगे आप 3636 पर। अच्छा, इससे पहले कि मैं कोई ना कोई सवाल फ्लोट करूं, चंद आपके मैसेजेस जो हैं वो हम शामिल शो करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीता काटा है हमारे यूसुफ भाई ने महापुरुष से और कहते हैं तमाम सुनने वालों को और एफ एम 100 की तमाम फैमिली को सलाम, खसूसी तौर पर आंटी चाची अरूसा गुलवानों, तमाम डॉक्टर्स, इमाम इमरान भाई, खिताब गुल्लाला और गुफरान भाई और मेरे वाले साहब को उन्होंने सलाम कहा। वाले सलाम शहजादी महना जरीन नूर भी आ गई हैं, कह रही हैं सलाम कैसे हैं वाले साहब को, संजू को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम महना, जीती रहो, मुस्कुराती रहो। और जनाब रसगुल भी जल्दी जल्दी आ गई हैं, सलाम के बाद कह रही हैं कि कैसे हैं भाई आपको, अयुब लाला को, संजीदा आबी को, मुश को, मानूर को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने सलाम कहा। और आज का शो संजू को बहुत पसंद है, पुराने सॉन्ग है, अच्छा सा सॉन्ग संजू के नाम कर दीजिएगा। जरीन नूर कह रही, जरीन नूर को ही फरमाइश करो, हम संजू के नाम 100% ट्रैक करेंगे, लेकिन आप बताएं कि नदीम भाई ये वाला ट्रैक चलाने कोशिश कीजिएगा, जरा आसान सा हो, ढूंढने में ज्यादा दुश्वारी ना हो। नोट कर लिया है हमने ये, यानी कि समझ रही है ना आप। पीर मोहम्मद इलियास साहब कह रहे हैं नदीम भाई मोस्ट वेलकम, सुपर ओपनिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, क्या बात है, यू प्ले आई लव इट, वाओ, प्लीज टुडे यू प्ले मुन्नी बेगम। मुन्नी बेगम ने कौन से फिल्मी गाने गाए, मेरा ख्याल गाया है कोई। मुन्नी बेगम को सुनना है ना तो आप जुमेरात वाले शो में सुनिएगा, आप भी जरूर चलाएंगे। मेहर आ गई है, मेहर देखो सही नाम लिया है, बफर जोन से कह रही है सलाम नदीम भाई, बहुत जबरदस्त सॉन्ग था। हैं जी ते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों दास फिरते हो सर्दियों की शाम में। और इससे पहले कि हम और जो है यार, अब आप लोगों ने ऐसा बता दिया है, वो बना दिया है, क्या नाम है, कि आपको गाना इतना पसंद आ गया, समझ में नहीं आ रहा कि अब और इससे अच्छा गाना कौन सा चलाऊं। लेकिन खैर, एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक और है आप सबके लिए, हेलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों इंतजार करूं। ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। माहौल बना रहा हूं, जरा अच्छे अच्छे गाने चला रहा हूं ताकि आप लोगों का मूड जरा ऐसा ही बन जाए। हैं जी, जी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? अयूब लाला मुश्क और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। और अयूब लाला के लिए अच्छा सा सॉन्ग लगा दीजिएगा, एच गुल कह रही हैं, चला देंगे जनाब। और जनाब वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। इन सॉन्ग में से कोई एक सॉन्ग चला दीजिएगा। दो गानों की फरमाइश की है उन्होंने और उसके बाद उन्होंने कहा है कि समी शेख, अयूब आफरीदी, नसीम कुरैशी, खिताब गुल्लाला, इमरान रियाज और आपके इंतहाई वाजिबुल एहतराम वालिद मोहतरम जावेद अख्तर साहब की खिदमत अकदस में मेरा अकीदत भरा सलाम पेश कीजिएगा। हर लम्हा दुआ गो, नेक ख्वाहिशात के साथ अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, एफ बी एरिया कराची से। जनाब आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली, चलाएंगे चलाएंगे चलाएंगे, पक्का पक्का। वैसे आप बहुत ही दुखी किस्म की फरमाइशें करते हैं, कोई खुशी के गाने भी किया करें। और हमारी प्यारी सी चाची आ गई, कह रही है सलाम नदीम, काइंडली सवाल तो बताएं। चाची बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। पहले आप लोगों के मैसेज थोड़ा सा वार्म अप कर दें, उसके बाद जहन पर जोर। वैसे भी चाची बहुत कम ऐसे मेरे लिसनर्स हैं, मतलब गिनती के हैं कि जो के सवाल जो मैं फ्लोट करता हूं उसका जवाब दे रहे होते हैं। बाकी यही कह रहे होते हैं कि भाई इनको गाना डेडिकेट कर दें, उनको कर दें, और कुछ नहीं। हालात के हवाले से जरा बात करें, आप लोग क्या कहेंगे, कैसे गुजर गुजर औकात हो रहा है,

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें जनाब मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो ऐने सुने हो। म्यूजिक ट्विस्टर में है वो आपके साथ आपका और मेरा साथ है जनाब एक बजे तक ओल्डी गोल्डी क्लासिक में खुशामदीद मैसेजेस की जानिब जाएंगे तो सवाल के हवाले से भी मैं सोच रहा हूं कि पहले सवाल करूं या ना करूं या पहले मैसेजेस की जानिब जाऊं है जी। खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में सवाल अभी आपसे करेंगे। एक तज्जिए के मुताबिक सवाल मैं फ्लोट कर रहा हूं तज्जिए के मुताबिक है कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो रोशनी में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है। दिमाग लड़ाइए और बताइए। और जनाब आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जाने जी जनाब साहिबजादा साहब ने जो मैसेज किया है जो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था वो पंजाबी में लिखा हुआ है

0: और पंजाबी में भी मैं पढ़ दूंगा। ना वो मेनू कोल बुलावे ना मेरे कोल आवे, तो फिर ऐसी की असी की कर सकते हैं, असी किसी और नू फेर ले आवांगे। पता नहीं क्या लिखा हुआ है साहब, ज्यादा सब क्या हो गया है, खाना खाया था आज आपने, अगर बता दीजिएगा। खान न्याजी साहब कह रहे हैं नदीम भाई कैसे हैं आप, मेरे भाइयों को सलाम। कोई दुखी सा सॉन्ग सुना दे खान न्याजी, फिर दुखी गाना। यार अभी तो बात पक्की हुई है आपकी, न्याजी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, जरा बताइएगा। बात पक्की हो गई है, घर वाले गए थे डेट लेने के लिए, क्या बना उसका, ये दुखी गाना तो कुछ गलत बता रहा है मुझे। अस्सलामुअलैकुम नदीम भाई, मोहनलाल आ गए यूके से यानी कि उमरकोट से, कह रहे हैं भाई कैसे हैं आप। तुम ही हो महबूब मेरे, क्या बात है, सुपर प्रोग्राम नदीम भाई। आपकी पसंद का सॉन्ग कौन सा है जिसको आप बार बार सुनना चाहते हैं, प्लीज आज अपनी पसंद का सुनवा दीजिएगा। सुनवा देंगे, अभी भी जो सुनवाए हैं वो मेरी पसंद की थी। पाकिस्तानी मूवीज के पुराने गाने जितने भी हैं, ओल्डी ओल्डी गोल्डी क्लासिक, क्या बात है यार तमाम गानों की। बहुत ही कम ऐसे गाने होंगे जो आपको पसंद ना आते हों। औरंगी टाउन से रेहाना आ गई है हमारी बहना और कहती है एने अस्सलाम वालेकुम एंड सलाम टू ऑल लिसनर्स, चाची को ढेर सारी दुआएं और नैयरा नूर का सुपर सॉन्ग लगा दें। और लिखा हुआ है आज गम है तो क्या है, वो दिन भी जरूर आएगा। मैंने खैर गाने के बोल लग रहे हैं मुझे, ढूंढेंगे जनाब आपके लिए ये गाना, इंतजार करना पड़ेगा आपको। और इमाम बख्श सियाल साहब टंडो जाम से आ गए हैं और कह रहे हैं कि प्लीज प्ले नुसरत फतेह अली साहब के एक ट्रैक की इन्होंने रिक्वेस्ट कर दी है, जनाब नहीं चल सकता, फिल्मी गाने चलेंगे पाकिस्तान। सलाम वजी बाबा सही, आज हमारी तरफ से भी कोई एक सॉन्ग संजीदा जी को डेडिकेट कर दीजिएगा। ले जी दो हो गए गाने, सलीम अमन कह रहे हैं बिल्कुल कर देंगे जनाब, कोई शक नहीं है, 100% होंगे, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ जी, नौरीन बहना आ गई हैं, नौरीन बहना कह रही है अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे मिजाज है, डेलो सलामती की दुआएं आपके लिए और तमाम हसीन तरीन जमातों को भी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया नौरीन बहना, क्या बादाम बहुत खाती हैं, अखरोट खाती हैं ज्यादा, आप अखरोट से दिमाग तेज होता है। ज्यादातर जवाब जो है इनके दुरुस्त आते हैं भाई। हमारे जानू भाई भी सुन रहे हैं, जानू बर्गर वाले, अरे जानू कैसा है मेरा शहजादा। ठंडी ठंडी सी पेप्सी की दो बोतलें बेहतरीन किस्म की रखना अपने पास, मैं आऊंगा वापसी पर लेकर जाऊंगा। है जानू, अच्छा वो जानू बर्गर वाले के साथ भी एक है वो भी सुन रहा होता है। जानू बर्गर वाला तो बन कबाब सेल आउट करता है, साथ में दाल चावल, सर्दियों में सूप। भाई जानू बर्गर वाले का आया है मैसेज, आज सुन रहा है वो। गुफरान भाई भी सुन रहे हैं भाई, सलाम कह रहे हैं, कह रहे हैं उस दिन बर्गर बहुत अच्छा था भाई। अच्छा था या नहीं था अंडे वाला बर्गर? जानू तारीफ हो रही है तुम्हारी। और जानू के साथ जो है, जानू की दुकान के साथ जो है ना, वो ब्रोस्ट वाले, ब्रोस्ट वाले वो मैं ले आऊंगा आपके लिए यार, अब कम करें। और उनके बराबर में जावेद निहारी वाले, सॉरी मुल्ला निहारी वाले, हाँ आसिफ भाई हमारे
1: निहारी बनती,
0: आसिफ भाई निहारी हो गई भाई, निहारी का मूड हो गया इनका। ब्रोस ब्रोस का मना कर दिया था। खैर जी, हाँ अभी अब हम अभी तो ये बातें कर रहे थे इनके बारे में, लेकिन अब इनका जिक्र कर दे, जानू बर्गर वाले को वेलकम कहेंगे, साथ में जो है हमारे आसिफ भाई नहीं मुल्ला निहारी वाले उनको वेलकम कहेंगे, साथ में ब्रोस वाले जो है उनका नाम नहीं आता मुझे। तो जानू भाई बोतलें दो पक्की होनी चाहिए पेप्सी की, तुम्हारे लिए गाना चलाएंगे हम, एक बांग्ला धुन का चलाएगा, बांग्ला धुन का, बांग्ला धुन का कोई गाना है मेरा ख्याल है, बिल्कुल है, हम आपको बताता है वो है मांझी हो टाइप का है। हाँ तो जरा मैं अभी याद करने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ, तो हम जानू भाई को डेडिकेट करेंगे। अरे जानू बर्गर, जाएंगे जनाब एक छोटी सी ब्रेक की जाने।
2: This transmission is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको भाई, एक नैयरा नूर का ट्रैक है, सुपर सॉन्ग। आज गम है तो क्या है, आज गम है तो क्या है। गुफरान भाई जरा देखिएगा, हमारी रेहाना बहना ने इसकी फरमाइश की है। गुफरान भाई से कोई काम कराना ना, इतना आसान है नहीं, आपको पता नहीं है। ये नहीं है, और एक पहले थे सैली। अच्छा जी, खान नियाजी कह रहे हैं जी नदीम भाई, 3, 4, 5, 6 दिसंबर डेट फिक्स हुई है। अभी क्या चार शादियां कर रहे हो आज? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नींद में समझ विभाग, ये जो आपने इशारा किया ना, इससे समझ में नहीं आया मुझे, कुछ और सोचें। वैसे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अक्सर इस तरह का गेम होता है ना कि सामने वाला बंदा शख्सियत दिखाते हैं लोगों को, और दो जो बंदे हैं वो उसका बूझ रहे होते हैं। वो मैं तो आपके हर इशारे को बूझ लेता हूं, लेकिन ये आपने सही इशारा नहीं किया। एन गैन, गैन गैन से मीम गम। हाँ, आज गम है। अच्छा अच्छा समझ गया, वो गाने का पूछ रहे हैं, आज गम है तो क्या है। बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ का मैसेज पूरा नहीं हुआ था, तो खैर सवाल का जवाब तो उन्होंने दोस्त दे दिया, और कहती हैं कि मेरी प्यारी रूहे जान को, चाची को और लाला को खुसूसी सलाम और ढेरों दुआएं पहुंच गई जनाब आपकी जानिब से। मैसेजेस और भी हैं, मगर हमने गाना चलाना है एक बहुत अच्छा सा। हेलो फड़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, ब्यूटीफुल ट्रैक, रिमिक्स तो सुना होगा आपने, आज ओरिजिनल सुना आपने, यानी कि समझ रहे हैं ना भाई। सवाल हमारी चाची ने तो सबसे पहले जवाब दे दिया था, मैंने चाची का मैसेज के टाइमिंग देखी, नौरीन बहना और हमारी प्यारी सी चाची, इन्होंने जवाब दे दिया और दुरुस्त दिया। हाँ, लेकिन हमारी चाची क्या करेंगी, थोड़ा सा मुश्किल सवाल करो। आए लची चाची, अभी इस सवाल का जवाब भी कोई नहीं दे रहा, सिर्फ आपने और नौरीन बहना ने दिया, यानी कि समझ रही है ना आप। लेकिन एक ट्रैक जो है वो अजरा शब्बीर को हमने जरूर डेडिकेट करना है और बहुत जल्द करना है, डोंट वरी चाची। खान नियाजी साहब कह रहे हैं, इनका मैसेज पूरा मैंने रीड किया था, कि नदीम भाई 3, 4, 5, 6 दिसंबर डेट फिक्स है भाई जी, आपने आना है। बिल्कुल आएंगे जनाब, और फ्रॉम फैमिली को भी लाना है। अच्छा जी, साथ में विद फैमिली आना है। खान नियाजी साहब, दिसंबर कौन सा दूर है, मतलब अक्टूबर तो समझो गया, सितंबर, सितंबर गया और अक्टूबर नवंबर है, बस बीच में 2 महीने, बस कसरत करें आप जितनी भी कसरत कर सकते हैं। और नदीम अख्तर भाई को और सब लिसनर्स को मेरा सलाम, शो वेरी नाइस। इरम यूनस कह रही हैं, इरम यूनस जीती रहे, मुस्कुराती रहे, और एक दफा नहीं दो दो दफा सलाम कह दिया, हाय लज्जी इरम, थैंक यू वेरी मच। दो दो मैसेज आ गए आपके, आपने मैसेज की बैंड बजा दी है भाईजान, अब क्या करें, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। साहिबजादा साहब एक तो रोमन में और वो भी पंजाबी, बैक टू बैक। अच्छा, ये आपको मुझे याद दिलाने की जरूरत है, मसरूफ हो गए हम। इमाम बख्श साहब कह रहे हैं कि प्लीज प्ले जाने मन जानू सुन जरा। यार ये गाना तो वैसे जो है ना हमारे जानू बर्गर वाले को डेडिकेट होना चाहिए, चला देंगे भैया। और हाय सुपर नदीम, हाउ आर यू, सलाम टू ऑल, ओल्ड इज गोल्ड, हार्ट टचिंग सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले फॉर मी एंड माय फ्रेंड अंबर सहर महरीन फ्रॉम कराची। अच्छा जी, आपकी दोस्तों के नाम तो पता चल गए, मगर आप कौन हैं, अपना नाम तो लिखा ही नहीं है आपने। लेकिन एनीवे, हम नेक्स्ट सॉन्ग इनको डेडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो एक रिक्वेस्ट है, डेडिकेशन है, और उसके बाद जो है हम कर देंगे ट्रैक, आपकी दोस्तों को जरूर डेडिकेट करेंगे। बट एक मैसेज आपका और आना चाहिए आपके नाम के साथ। मेहर कह रही है ओके, अरे वाह भाई वाह, मेहर ने भी दुरुस्त जवाब दे दिया, चाची सही कह रही थी, आसान लग रही है मुझे, कोई सवाल का जवाब आसान है। और कह रही है ये सॉन्ग भी जबरदस्त था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तो मैंने अपनी तरफ से चलाए थे, अभी 2-3 गाने जो हैं वो आप लोगों की फरमाइश पर चलेंगे, ये जहन में रखिएगा, उसके बाद फिर मैं अपनी जानिब से, मैंने अभी मतलब फरमाइश पर, उसके बाद फिर अपनी जानिब से, फिर फरमाइश, फिर अपनी जानिब से, इस तरह कर लेते हैं, ताकि मेरी पसंद जो चल रही है वो भी आपको, क्योंकि ज्यादा पसंद आ रही है तो अच्छी बात है ना। आज का शो फुल शरारत से भरपूर होगा, क्योंकि आज गुफरान भाई आए हुए हैं, मेरी तरफ से उनको सलाम कहिएगा, सलीम अमन कह रहे हैं। गुफरान भाई इस वक्त बेहद मसरूफ है ना, बहुत ज्यादा आपको सलाम अलाम आ रहे हैं। गुफरान भाई आजकल बहुत चैटिंग कर रहे हैं, भाभी से बात करनी पड़ेगी मुझे लगता है। आप सफाइयां नहीं दें, मैं समझ सकता हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो गुफरान भाई जो है मसरूफियत थी, अब आ गए हैं। और आगे बढ़ते हैं जनाब। नदीम भाई अगर हो सके तो अयूब लाला के लिए अपनी आवाज में अच्छा सा सॉन्ग चला दीजिएगा। एस गुल कह रही हैं, सलीम अमन कह रहे हैं कि आज खूब शरारतें होंगी, गुफरान भाई आए हुए हैं। तो गुफरान भाई ने वैसे आते ही शरारतें शुरू कर दी हैं।
1: हो सके तो मेरा एक काम करो, कुछ पैसे मुझे उधार करो,
2: तो मेरा एक काम
0: غلط کہا آپ نے, ایک کام کرو یہ ہونا چاہیے. آپ جو ہے یہاں پر غلطی بھیجے, صحیح کہا نا میں نے. اچھا جی, شرارتیں تو چل رہی ہیں ساتھ میں, اور مجھے جو ہے نا بھرپور طریقے سے فرمائشیں اتنی جمع ہو گئی ہیں کہ جس کی حد نہیں. تو آپ سب کو یہ کہوں گا کہ 12 بجے کے بعد کوئی فرمائش کاؤنٹیبل نہیں ہوگی, وقت ملا تو پھر چلا دیں گے. فی الحال ابھی آپ کو ایک ٹریک کی جانب لے جانا تھا مگر نہیں لے جا رہے کیونکہ ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک سے پہلے ہم چند میسجز پڑھ لیں. اچھا ابھی پیر محمد الیاس صاحب کہہ رہے ہیں, ندیم بھائی گریٹ جاب, نائس سانگ یو پلے, آئی لائک رومانٹک سانگ. ناز بیگم مہناز, اچھا مہناز بیگم کا سانگ پلے کر دیں, آئی ہوپ یو پلے کیپ اپ, کیپ اٹ اپ ندیم بھائی. اور آنسر انہوں نے درست دیا ہے. بھائی جان جس طرح ہم نام پڑھتے ہیں نا یہ ہمارا کام ہے. حالانکہ صاحبزادہ صاحب ناراض ہو گئے. یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں یہ کس طرح پڑھا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میسج آ رہے ہیں ندیم بھائی میسج پڑھے. یہ اکثر لوگ سمجھتے بھی ہوں گے, سننے والی سماعتیں سمجھ رہی ہوں گی ندیم بھائی اٹک رہے ہیں یا ندیم بھائی گبلے کر رہے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, آپ لوگوں کے جو میسجز آتے ہیں یقین مانیے کہ بہت بڑا جگر چاہیے ان کو پڑھنے کے لیے. ہیں جی
2: مہناز بیگم نے لکھا ہوا, یہ میری ناز لکھا ہوا ہے.
0: نہیں میہ میہ میہ میہ میہ. خیر اینی وے میں پھر بھی پڑھ لیتا ہوں. تو ہمارے صاحبزادہ صاحب ایم ہی ناراض ہو گئے, کہہ رہے یار ندیم بھائی آپ نے بینڈ بجا دیا یار, کیسا میسج پڑھا آپ نے. تو آپ اسی کو آپ اردو میں لکھ دیجئے رومن صاحبزادہ صاحب, میں اس کو پنجابی میں ترجمہ کر کے صحیح پڑھ دوں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. جائیں گے جناب ایک چھوٹی سی بریک کی جانے.
3: This transmission is brought to you by the best of homeopathy, Schwabe Single Remedies, Germany. FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

वेलकम बैक गैंग, और हम आपको लेकर जाएंगे एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक के जाने पर। ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे हमारी प्यारी सी अजरा शब्बीर को, चाची, हमारी प्यारी सी चाची की जानिब से ये ट्रैक है। तो अजरा शब्बीर जी, आपके लिए गाना चाची की जानिब से। एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक। तेरी खातिर जल रहे हैं कब से दीवाने। क्या बात है। अच्छा भाई, एस गुल आ गई, एच गुल आ गई, ना मुश्का ही है और ना ही अयूब आफरीदी साहब आ गए और ना ही संजू आई है, लेकिन इन सबको गाने डेडिकेट हो रहे हैं। यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हैं जी, मैसेजेस आपके बहुत सारे हैं भाई, उनकी जानिब जाएंगे ताकि ये शिकायत ना रहे कि मैसेज नहीं पड़ा। और अस्सलाम वालेकुम नजीम भाई, मोहनलाल यूके से। अच्छा, बिल्कुल सही फरमाया आपने, मतलब अभी तक जितने भी जवाब आ रहे हैं दुरुस्त आ रहे हैं। मोहनलाल का भी दुरुस्त आया, हमारे पीर मोहम्मद इलियास साहब का भी दुरुस्त आया, सबसे पहले हमारी चाची और नौरीन बहना ने दिया इसका जवाब, और जरीन नूर बहना का नहीं आया जवाब, वो भी देती है माशाल्लाह से सही जवाब ज्यादातर। अच्छा, नियाजी साहब कह रहे हैं कि सुबह मुझे इतने लोगों ने कॉल मैसेजेस किए थे, आप रात FM पर आ रहे थे, आपने एक मंथ पहले आना है नदीम भाई। समझ नहीं आया नियाजी साहब, आपकी शादी है भाई, मेरी थोड़ी है कि मैं एक महीना पहले मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आपको मैसेजेस आ रहे होंगे, मुबारकबाद के आएंगे, हमारी जानिब से भी मुबारकबाद है और आपको जो है बाकायदा गाना डेडिकेट करेंगे। आपकी होने वाली बेगम, मतलब होने वाली मिसेस खान नियाजी, अच्छा लग रहा होगा ना। तो पहले आना है, अगर एक महीना पहले आप बुला रहे हैं तो क्या मतलब किसी दूसरे शहर में शादी वादी का हो रहा है क्या सिलसिलेगार, ये भी बताइएगा। और चाहत कह रहे हैं, सलाम नदीम भाई, एसगुल आप जो ये मानूर को सलाम कहती हैं। अच्छा भाई, चाहत आपका पहला मैसेज आया और वो भी अजीब टाइप का मैसेज आया, ये मैं तस्दीक करने के बाद जो है इस हवाले से बात करेंगे। और ये खबर मानूर के हवाले से चाहत जो दे रहे हैं, ये एसगुल को दे रही हैं या मुझे दे रही हैं, ये बताइएगा आप। अच्छा जी, वाजिद साहब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नदीम भाई, आप के सवाल का जवाब है बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, और नूरजहां का कोई गाना चला दीजिएगा। अच्छा वाजिद भाई, नूरजहां का गाना तो जरूर चलेगा। और आपके नाम कर देंगे वो। अच्छा, अपने तमाम लिसनर्स को एक खबर भी देना चाहूंगा और दुआ की दरख्वास्त भी आप लोगों से होगी। हमारे बहुत ही प्यारे हरदिल अजीज, हमारे मोस्ट सीनियर आरजे अजमल शोभी भाई मेरे शो के बाद शो करते हैं, तो आज वो शो नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनका एक एक्सीडेंट हो गया था कल रात को, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है वो, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और जल्द अज जल्द वो सेहतयाब हों और आकर यहां पर आपके साथ शो करें। तो शोभी भाई के लिए खुसूसी तौर पर ढेरों उनकी सलामती की दुआएं, आप सबसे गुजारिश है जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा।

अभी हम जनाब एक ट्रैक की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक हमारी नई लिसनर है कोई और उनकी दोस्तें भी सुन रही हैं। उन्होंने अपना अभी तक नाम नहीं बताया लेकिन उनकी दोस्तों का नाम जो है वो हम तक पहुंच चुका है, तो लिहाजा उनकी दोस्तों को ट्रैक डेडिकेट करेंगे, जिनका नाम है अंबर सहर और महरीन। अंबर सहर महरीन आपकी जो दोस्त हैं उनकी जानिब से आपके लिए ये ट्रैक एलो फड़ो।

वेलकम बैक दो साथी जीवन के ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। अच्छा भाई, आपके मैसेजेस जो है वो मैसेंजर पर भी बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे से लिसनर हैं जो कि मैसेंजर पर मुख्तलिफ शहरों से भी मैसेजेस कर रहे होते हैं, वो भी इंतजार में होंगे कि नदीम भाई अभी तक हमारे मैसेज नहीं पढ़े। भाई असल में 3636 पर जो मैसेजेस आते हैं वो सबसे पहले प्रियोरिटी होती है, तो उनको मैं पहले पढ़ता हूं और उसके बाद फिर कहीं जाकर जो है मैं इस जानेब आता हूं। तो लिहाजा मैसेंजर पर जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर्स ने मैसेजेस किए हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। भरपूर तरीके से मेरी कोशिश है कि मैं ये मैसेजेस साथ ही साथ पढ़ता जाऊं, मतलब ऐसा हो जाए कि लास्ट मैसेज जो आया है वहां तक पहुंच जाऊं। ये भी मैसेजेस आए हुए ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आधा आधा घंटा हो चुका है। अता मोहम्मद डोडा साहब आ गए हैं, कह रहे नदीम भाई हमारे दोस्त कयूम बलोच आपके बहुत पुराने सुनने वाले हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम असलाम कयूम भाई, कैसे हैं आप? हाल चून है जी। और उसके साथ साथ एक मैसेज और भी था, कहां गया?

0: सलीम मेमन ने कहा कि आपके सवाल का जवाब जो है वो है साया। बहुत ही जबरदस्त आपने जवाब दिया, क्या बात है। इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा रोशनी में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है? तो साया अंधेरे में बड़ा हो जाता है।
1: अमा सलीम मेमन भाई, क्या बात है आपकी।
0: और आगे बढ़ते हैं, पीर मोहम्मद इलियास साहब का मैसेज ये वाला हो गया था। हमारे मोहनलाल ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया था। अच्छा साहब, ज्यादा साहब ने पी आई हमारी पाकिस्तान एयरलाइंस के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन दी है, ये ठीक है। और जनाब वाजिद साहब का भी मैसेज हो गया था। हाँ, हेलो नदीम, सबको मोहब्बत भरा सलाम, गुफरान ब्रो को भी सलाम। काफी टाइम से प्रिंस आरजे अयाज अहमद का शो भी नहीं सुनना। मेरा नाम महरीन है। आप भूल गए मुझे? नहीं भूले जनाब महरीन, मैंने आपको याद होगा कि मेरी फर्स्ट कजन चचाजाद बहन है, उनका नाम भी महरीन है। तो आपका नाम कैसे भूल सकता हूँ। हैं जी वो पिशावर में होती है। लेकिन जब भी आप मैसेज किया करें तो नाम जरूर लिखा करें ताकि पता चल जाए कि किसका मैसेज है। अबे नाम ही नहीं है तो फिर, यानी कि समझे, तस्वीर थोड़ी ना आ रही है कि तस्वीर आ गई है भाई, ये भाई, तो तस्वीरें जहन नशीन हो जाए। तो बहना आप जो है नाम जरूर लिखा करें, नंबर वन। नंबर टू ये कि प्रिंस आरजे जो है अयाज, वो उसका शो तो कमाल और धमाल का होता है। अभी मुझसे पहले वही शो करके गए हैं लेकिन आपसे मिस हो गया। लेकिन इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में जाहिर है आप मसरूफ होंगे, तो जब भी वक्त मिले जरूर सुनिएगा उनको। और सलीम मेमन साहब ने जो है एक फरमाइश कर दी है। और अनीस साहब आ गए हैं, कह रहे हैं सलाम मेरे भाई, और तमाम लिसनर्स को भी सलाम। कल आपने मुझे सॉन्ग डेडिकेट किया अपनी तरफ से, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल ही खुश हुई। जीते रहो मेरे शहजादे, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा आपके सवाल का जवाब है शाया। पहले साया लिखा था, अब शाया लिख दिया सलीम मेमन। इस साया शाया क्या होता है भाई। न्याजी साहब कह रहे हैं नदीम भाई खैरपुर, ओए हो इतनी दूर कहां आऊंगा न्याजी साहब। सखर खैर इतना दूर तो नहीं है, मगर अगर वक्त मिला तो जरूर आएंगे, और अगर वक्त नहीं मिला तो दुआएं आपके साथ हैं जनाब हमारी। मोहम्मद नवाज साहब पाक रेंजर से ड्यूटी कर रहे हैं सिंध, पाक रेंजर सिंध से, और कह रहे हैं मैं ड्यूटी पर हूं और शो सुन रहा हूं आपका शो, बहुत अच्छा, क्या बात है। सही नवाज साहब, जीत रहे हैं, मुस्कुराते रहे, आपको गाना डेडिकेट करेंगे यार। अभी तो बस 12 बज चुके हैं, तो अब गाने ही गाने चलेंगे। बस मैं मैसेजेस जितने हैं वो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ लूं। और बासित सुभानी मलीर कैंट से, मैंने अभी ऑन किया FM, सवाल क्या है और गाना अरेबिक गाना इंग्लिश गाना नहीं चलेंगे। बासी सुभानी साहब हमारे नए लिसनर हैं, तो आज का जो शो है यानी कि मंगल वाले दिन शो जो होता है वो पाकिस्तानी मूवीज के ट्रैक्स के हवाले से होता है, ओल्डी गोल्डी क्लासिक होता है, पुराने गाने और बहुत पुराने पाकिस्तानी मूवीज के जो है वो चलाते हैं। तो शहजादे इस वजह से ये सीन नहीं होगा। अभी जाएंगे जनाब एक ट्रैक की जानिब, और उसके बाद फिर हम मैसेंजर में जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर सुन रहे हैं मुझे, उनके मैसेजेस की जानिब जाएंगे। तो लिहाजा आप लोगों ने नाराज नहीं होना, आप लोगों के मैसेजेस अभी कुछ ही देर में हम पढ़ेंगे। अभी जाएंगे हम जनाब एक ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक जो है हमारी प्यारी सी बहना रेहाना ने जो है इसकी फरमाइश की थी, और उनकी फरमाइश एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आए हाय है आज गम है तो क्या है नैयरा नूर की आवाज और उम्मीद करता हूँ कि आपको आई होंगी पसंद। अब्बास खान साहब ने मैसेज किया जनाब और कहा है हाय हाय हाय हाय ये हाय हुई नहीं किया अगर भाई अस्सलामु अलैकुम सबसे बेहतरीन इसका जवाब है या सवाल है हैं जी ते हैं जी आए हाय आज बहुत दिनों के बाद हमारे मासूम सा खरीफ सा बच्चा आ गया सूट छोड़े को मासूम से खरीफ से बच्चे का सलाम कबूल हो मेरी सिस को कैंसर हो गया है जिसकी वजह से टेंशन है सुने अल्लाह पाक ऐसे मर्ज से हर किसी को महफूज रखे आमीन। और मेरी कजन ने आपको मैसेज किया था आपको सुने इस वजह से सब गायब है शो से आएंगे कुछ दिन में आपके शो में इरफान मेमन यकीन माने कि आपने बताया बहुत परेशानी जहन में आई है और यहां पर बैठकर हम अपनी बहन के लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और ये ला इलाज मर्ज नहीं है इसका इलाज है और अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है आप बस कोशिशों में लगे रहें हम लोग आपके साथ हैं अल्लाह आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी प्यारी सी बहन के लिए बहुत सारी दुआएं करें ये मेमन कजन्स जितनी भी हैं बहुत प्यार बहुत मोहब्बत बहुत चाहत बहुत क्लूज के साथ शो सुनती हैं हकीकी ऐसा लगता है कि वाकई बहनें मेरी सुन रही हैं सारी और बहुत दिल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस मर्ज से निजात अता फरमाए हम सब की दुआएं इरफान मेमन और मैं इंशाल्लाह ताला हर शो में दुआ करवाता रहूंगा कि उनको जल्द अज जल्द सेहतियाबी अता फरमाए आमीन सुम आमीन। और जनाब हमारे फरहान रजा भाई भी आ गए कह रहे हैं तमाम ही काबिल एहतराम समातों को फरहान रजा की का दिल की गहराई उसे सलाम और खुश आमदीद कहता हूं। अच्छा बहुत मुश्किल उर्दू लिखी हुई है पढ़ भी सकता हूं मगर वक्त जाया होगा सबका अहवाल पूछा है और प्यारी सी अम्मी और अम्मी जैसी प्यारी सी आंटी और तमाम अहबाब के लिए ढेरों सलामती की दुआएं दी है फरहान रजा फ्रॉम होम टाउन नवाबशाह से फरहान भाई ने फरमाइश भी कर दी है हाय फरहान भाई कह रहे हैं कि ट्रैक जरूर चलाइएगा और मेरी वाइफ को डेडिकेट कर दीजिएगा बिल्कुल करेंगे फरहान भाई आपका एक जो है इंतखाब भी आया जो कि अभी फिलहाल शामिल नहीं कर सकेंगे। इनामुल हक साहब आ गए कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जान कैसे हैं आंटी को चाची को संजीदा को समी को सलाम और सलीम भाई को भी सलाम और तमाम सुनने वालों को भी सलाम वालेकुम अस्सलाम चाची हमारी प्यारी सी क्या कह रही हैं कह रही हैं हो सके तो मेरा एक काम करो मेरा बिजली का बिल अपने नाम करो और चाची थैंक्स नहीं कहते। फरहीन शहजादी आ गई है सलाम के बाद कह रही है क्या हाल है आपके सुने हो तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम ढेर सलामती की दुआएं एफएम की पूरी टीम को भी मेरा सलाम वालेकुम अस्सलाम। नौरीन भैना देर आए दुरुस्त आए बहुत माजरत सबके ये मैसेजेस मैं देर से पढ़ रहा हूँ भूली अच्छा अच्छा एक फरमाइश आ गई है जनाब

और बिल्कुल फरमाइश नहीं है बल्कि डेडिकेशन है, बिल्कुल करेंगे बहना, आपका पहले से नोटेड है। और हमारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैसेज कभी कभी करता हूं पर खामोशी से आपको सुनता रहता हूं, सलामत रहे। आपके सवाल का जवाब दुरुस्त दिया है हमारे इरफान सलीम साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सलीम साहब। अच्छा जनाब, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इस तरह चलेंगे कि आप लोगों की फरमाइशें जल्द अज जल्द पूरी करें नालो नाल। अभी हम जिस ट्रैक की जानेब जा रहे हैं, ये हमारी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर की जानिब से डेडिकेट करेंगे संजू को और पीरी इलियास मोहम्मद इलियास साहब। आपने महनाज की आवाज कहा था तो महनाज की आवाज आप इसी में सुनिए, और ट्रैक जो डेडिकेट हो रहा है वो संजू को हो रहा है जरीन नूर की जानिब से।

वेलकम बैक। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ब्यूटीफुल मेहनाज बेगम की आवाज, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आई होगी। और जब न्याजी साहब कह रहे हैं, नहीं भाई मैं आपसे

मैं आ रहा हूँ अभी, आप मेरे से थोड़ा सा ही दूर हैं। 100 बिस्मिल्लाह करके है जनाब, हमारे ऑफिस आ जाए। चाय नहीं भी ला सकूंगा भैया, बाहर से पिला दूंगा चाय, आने के समझ रहे हो ना। अच्छा एक ट्रैक की फरमाइश कर दी है, मैं तेनू समझावा की भाई अपना नाम लिखोगे तो चलेगा। साहिबजादा साहब आप बिल्कुल दुरुस्त समझे। आपका मैसेज अभी जो आया है ये हमने पढ़ा है, और आपने जो लिखा है हमारे लिए बिल्कुल ठीक लिखा है, दुरुस्त समझे हम। इस तरह तो होता है ना इस तरह के कामों में। सनम बहना आ गए हैं, कह रही है फ्रॉम मुल्तान से कि तमाम सुनने वालों को और मैसेज करने वालों को मेरा सलाम, मुश्क और चाची को भी सलाम। मेरी दुआ है कि सब सलामत रहें और खुश रहें। नदीम भाई की उम्र लंबी हो, दराज हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना, आप जिस अंदाज से सबको लेकर चलते हैं आपका कोई आए हाय सानी नहीं। अरे मेरी बहना इतनी तारीफ है मत किया करो, ये मेरी मोहब्बत है आप लोगों से और आप लोगों की मोहब्बत है हमसे। और सलीम मेमन ने दोबारा रिक्वेस्ट कर दी है। एसगुल कह रहे हैं चाची आप कौन हैं, जरा बताना पसंद फरमाएंगे। पीर मोहम्मद इलियास कह रहे हैं हाफ सिंह आपका नदीम भाई, हाफ सिंह मेरी आधी सोच क्या है जरा ये बताइएगा। एम नवाज कह रहे हैं थैंक यू नवाज साहब, कैसे हैं आप, हमारे ये पाक रेंजर्स हैं। और भाई एसएमएस पढ़ने का भी और राहत फतेह अली का सॉन्ग, अच्छा आपने लिखा है राहत भाई का सॉन्ग नवाज भाई के लिए। फौरन से बेशतर जाएंगे जनाब हम एक और ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक की फरमाइश किसने की थी, हमारे इमाम बख्श साहब ने इसकी फरमाइश इमाम बख्श की है, और जानू बर्गर वाला सुन रहा है। जानू बर्गर वाले ये तुम्हारे लिए मेरी जानिब से।

0: जानू बर्गर वाले सुन ले।
1: गाना जो है अनवर रफी साहब गा रहे थे और उस पर एक्शन जो है वो गुफरान भाई के थे, कमाल के, बता नहीं सकते। अच्छा भाई, हमारे साहबजादे साहब ने एक बहुत जबरदस्त सा वाकया जो है वो बयान किया है, वो हम जरूर पढ़ेंगे। साहबजादा साहब, बड़ा जबरदस्त वाकया है, बस इस पर मैं यही कमेंट दूंगा कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, यानी कि समझ रहे हैं ना, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। 3636 पर आप कर सकते हैं मैसेजेस। और अभी हम जा रहे हैं जनाब एक और ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे रूहे जान को, यानी कि नौरीन की रूहे जान को, नौरीन की जानिब से। एलो फड़ो।

वेलकम बैक। अच्छा एक थोड़ी सी गलती हो गई, ये नौरीन बहना की जानिब से हमने डेडिकेट तो किया उनकी रूह जान को, मगर उन्होंने ये फीमेल वर्जन कहा था, मगर बहना बस वो जल्दी जल्दी में ये जो निकला वो मेल वर्जन निकल आया, तो हम आपको फीमेल वर्जन भी डेडिकेट कर देंगे, अभी नहीं शो के बाद जरूर चलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु टू ऑल। मैं नाकाम हो गई, हर हार गई दिल से आप लोगों को छोड़ने में। अल्लाह जान हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी फरमाए। यू नो आई एम लुकमान सलामी कश्मीरी। लुकमान साहब कैसे हैं आप? हमारी जानिब से भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपका मैसेज आया, उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। और उसके साथ ही अच्छा लुकमान साहब का एक दो दफा मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया। रेहाना कह रही है इन्हें भाई सॉन्ग लगाने पर आपका थैंक्स। मेरे शोएब अंकल को सलाम और सेहत याबी की दुआ, या अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमा, आमीन सुम आमीन। ये आपने जो बात की है शोएब साहब के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, हमारे शहाब अंकल भी हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं, इरफान नेमन की सिस्टर हमारी प्यारी सी बहना के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको इस मौलिक बीमारी से आजादी दिलवाए, आमीन सुमामी। हमारी प्यारी सी आंटी के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आयशा जी के लिए बहुत सारी दुआएं, अम्मा के लिए बहुत सारी दुआएं, हमारी एक दादी भी आती थी, नानी भी आती थी, उन सबके लिए बहुत सारी दुआएं। ये टेलीफोन यानी कि टेलीफोन कॉल्स आती थी इनकी ज्यादा। तो इसके साथ ही जनाब एक और ट्रैक की जानिब लेके जाएंगे, हमारे अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब की फरमाइश, एलो फड़ो। और उनके साथ साथ वाजिद साहब ने नूरजहान की आवाज का कहा था, तो दोनों की फरमाइशें पूरी हो रही हैं।

वेलकम बैक कहेंगे तकदीर की गर्दिश पे। यारी जने दुखी गाने क्यों दिलते हो भैया, लेकिन खैर गाने तो गाने अच्छे गाने। इरफान मियां कह रहे हैं, अच्छा इरफान मेमन की सिस्टर के लिए ढेरों सलामती की दुआएं दी हैं सलीम मेमन ने, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप सब दुआ कीजिए। और इलियास खान साहब का मैसेज आया है और उन्होंने सबको सलाम भी कहा है, आज बहुत अच्छा सॉन्ग चला रहे हैं आप, और एक आतिफ असलम के गाने की फरमाइश हो रही है। क्या बात है इलियास साहब, गाने मशरिक की जानिब चल रहे हैं, आप मगरिब की जानिब ले जा रहे हैं, वाह वाह वाह वाह वाह, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अभी हम फौरन से पेशतर जाएंगे एक और ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक जनाब हम डेडिकेट करेंगे एच गुल की जानिब से हमारे अयूब आफरीदी लाला को।

Welcome back, Angus Sonio. नवाज भाई, आपने भी रिक्वेस्ट की थी हमारे पाक रेंजर्स से, सिंध रेंजर्स से. नवाज भाई, असल में आपने जो फरमाइश की है वो पाकिस्तानी गाने की ही है, मगर ये नई मूवीज के गाने, हम पुराने गाने चला रहे और बहुत पुराने गाने चला रहे, लेकिन आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे शो के बाद, जब मैं खुदा हाफिज करूंगा ना, टाटा बाय बाय, उसके बाद जो गाने चलेंगे उसमें आपका गाना भी जरूर चलेगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप. और सो थैंक्स एने भाई, बहुत अच्छा सॉन्ग था. पता नहीं अय्यूब लाला कहां गायब है, अब क्या करें भाई, हमने तो याद किया. और सुनो, मेरा सॉन्ग भी चला दें. SMS आपने पूरा नहीं पढ़ा, कुछ और भी लिखा है. मेरी दुआएं लिखी थी आपने इरफान मेमन की सिस्टर के लिए, अब आपने कहा ही है तो आपका पहले गाना चला देते हैं, फिर आपके मैसेज को भी देख लेंगे जी. ये ट्रैक जनाब सलीम मेमन की जानिब से हम डेडिकेट कर रहे हैं संजू को. संजू जी, आपके लिए एलो फड़ो.

वेलकम बैक। हो सके तो मेरा एक काम करो। और उसके बाद जो मैंने सलीम अहमद साहब आपका मैसेज नहीं पढ़ा, उसकी भी एक वजह है, यानी ये समझ रहे हैं ना, हर बात थोड़ी पड़ी जाती है। और जनाब मैसेजेस आपके उसी रफ्तार से आए जा रहे हैं, लेकिन आपकी फरमाइशें भी बहुत हैं, वो भी पूरी करनी है। हमारे मोहनलाल उमरकोट से कह रहे थे, नदीम भाई अपनी पसंद का गाना आप चला दीजिए जो आप बहुत सुनते हैं। ये ट्रैक जो है मैं आप सबके नाम करता हूं और खुसूसी तौर पर मोहनलाल साहब के। और इसकी वजह यह है कि ये गाना जब भी मैं सुनता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये ट्रैक जनाब, ये महरीन खान न्याजी साहब और मोहनलाल, आप सबके नाम करता हूं, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। अच्छा जनाब, अब सवाल और उसके जवाब की जानिब आ जाते हैं। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। सवाल मैंने आपसे ये फ्लोट किया था कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो रोशनी में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है, और इसका जवाब जो दुरुस्त जवाब नहीं था वो सिर्फ एक शख्स ने दिया, और वो है हमारे सलीम मेहन साहब। उन्होंने बताया साया, जो कि गलत है। बाकी तमाम मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर्स ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, उन्होंने दुरुस्त जवाब बताया। इसका जवाब है जनाब इंसानी आंख। आंख या आंख की पुतली कह लें, ये वो हिस्सा है जो के रोशनी में छोटा और अंधेरे में बड़ा। आंखें खुल जाती है ना अंधेरे में। तो ये सवाल का जवाब था। और अभी एक फरमाइश रहती है जनाब, हमारी प्यारी सी बहना एस गुल जो है उसने कहा था भैयों अपनी आवाज में कुछ हमारे प्यारे से अयूब लाला की, तो मैं चंद लाइनें एक मुखड़ा सुना दूंगा आपको।

वेलकम बैक कहेंगे जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। ये जनाब हमारी प्यारी सी बहन एस गुल की जानिब से अयूब आफरीदी लाला को डेडिकेट किया है। सो थैंक्स नदीम भाई, अल्लाह पाक आपको नजर बच से बचाया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी सी बहन। अब्बास भाई कह रहे हैं ओके ठीक। अब्बास भाई किधर गायब हैं आप? हमारे तारिक रोड वाले अब्बास भाई है ना, जरा ये बताइएगा, हमें पता है कि आप तारिक रोड पर नहीं है, मगर वही अब्बास भाई ये बता दीजिएगा जी। ये हुई ना बात शहजादे, दिल खुश कर दिया आपने। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अभी हम जा रहे हैं एक ट्रैक की जानिब, हमारी प्यारी सी बहन बहुत दूर से हमें सुनती हैं, जिनका नाम है नौरीन तौसी फैसलाबाद से। एंड गलती हमारी थी, अजाला भी हम करेंगे। तो उन्होंने अपनी रूह जां को एक ट्रैक डेडिकेट किया था उनकी जानिब से। एलो पढ़ो।

वेलकम बैक कहेंगे जनाब। अच्छा ये गाना नहीं था जनाब, ये कैसे गवल्ले हो रहे हैं वो भी एंड में। अच्छा शराती बाबू गुफरान भाई अचानक से कहाँ गायब हो जाते हैं, काम कर रहे होते हैं भैया सलीम अमन भाई। और हमारी प्यारी सी बहन है नौरीन, आज वो गाना चला के ही छोड़ूंगा मैं, चाहे शो गुजर जाए, डोंट वरी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो खैर जनाब हमारी नौरीन बहना की जो फरमाइश थी वो शो के बाद चलेगी। फिलहाल ये गाना भी क्या जबरदस्त गाना था, बहुत याद आएंगे वो दिन हमें तड़ पाएंगे। इलियास खान साहब कह रहे हैं नदीम भाई सब की फरमाइशें पूरी कर दी हैं, अब मेरा सॉन्ग भी चला दें आतिफ असलम का। मेरे शहजादे आतिफ असलम का गाना नहीं चल सकता, वो आप कल के शो में मुझे फरमाइश कर सकते हैं, चार गाने चला देंगे आतिफ असलम के। आज के शो में जो है पाकिस्तानी मूवीज के पुराने और बहुत पुराने ट्रैक जो है वो सुना रहे हैं आपको। और अब तो आपसे इजाजत लेने का भी वक्त आ गया है, तो इसके बाद जो है हमारे दो गाने जरूर चलेंगे मेरे शो के बाद। और एक गाना की फरमाइश जो है वो हमारे भाई ने की थी, नुसरत हमारे नवाज साहब ने, जो पाकिस्तान रेंजर्स से, तो उनकी फरमाइश जो है वो शो के बाद होगी। और उसके बाद मेरी प्यारी सी बहना नौरीन की फरमाइश पूरी होगी। जानू तुम्हें गाना डेडिकेट किया था जानू बर्गर वाले का, मैसेज आ गया जनाब, तो तुम्हें गाना जानू सुन जरा पलके तो हटा, तो ये ट्रैक आपको डेडिकेट किया था। तो एनीवे जनाब अब आपसे चाहनी है इजाजत, और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक जो कि मेरा फेवरेट है और आप सबके समातों के नजर कर रहा हूं, इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, अल्लाह हाफिज़।

रात चांदनी मैं, रात चांदनी मैं अकेली।

तेरा घर उजड़ते ही क्या बन गए हैं, उन्हें क्या खबर क्या गुजरती है तुझ पर, दौलत के बल पर खुदा बन गए हैं।

0: सूफी स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीमिया खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।